पाए हुरमत किसनु अगरे ओ बजो पे दुना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैरद अंदर पाए बजो गवाए अगला मोहि मोह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिए सबास नानक हुकुम न चले नाल खसम चले अरदास।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान

0: ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर के तरह तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 6:05 हो रहे ने। ते आओ हुण सुनते हैं ज्ञान अमृत।

0: हुने तुसे सर्वन कर रहे से भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुन तुहानू सुनाने आ प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

हुने तुसी सर्वन कार्य से मानस गांधा 114वां भाग मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। परिचय

आओ हुन तुहानू परिचय तहत जानकारी दी दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे जी प्रोग्राम सोनी सवेर। सवेरे 8:40 ते तुसी पंजाबी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम सुनोगे महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार भगता सिंह होरा पासों तार शहनाई वादन ते राग नट भैरव सुनोगे। इस विच उन्हां नाल तबले ते संगत करनगे जसकरन सिंह। उस बाद

0: अमेरिका खनिजखण्डानाम् अथ एकादश अन्वेषण अनुज्ञापत्रखण्डानां च सफलसघोषविक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभखनिजकार्यक्रमस्य महती गतिः प्राप्ता अस्ति। मन्त्रालयेन सघोषविक्रयणस्य सप्तमस्य खण्डस्य अन्तर्गतं दश महत्त्वपूर्णसामरिकखनिजखण्डाः सफलतया सघोषविक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तानाक्रमित जम्मूकश्मीरस्य स्थितिविषये कृतटिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोरालोचना कृता। विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् एताः टिप्पण्यः प्रतिवेशिदेशस्य स्वस्य असफलताम् अवच्छादनाय स्वस्य मानव अधिकारस्य उल्लङ्घनात् ध्यानं दूरीकर्तुं क्रियमाणाः निराशजनकाः प्रयासाः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः अवदत् यत् भारतम् एतान् कल्पित आरोपान् स्पष्टतया तिरस्कुर्वति। सः आशां प्रकटितवान् यत् अन्ताराष्ट्रियसमुदायः पाकिस्तानस्य दुष्कृतानां दुरुपयोगानां च उत्तरदायी भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन कतरदेशे विस्फोटेन द्वादश भारतीयनागरिकाणां मृत्योः पुनः पुष्टिः कृता अस्ति। जयस्वालः अवदत् यत् अस्यां घटनायाम् आहत्य 66 जनाः घातिताः सन्ति, ये सम्प्रति चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। कतरदेशे अग्निदुःखदघटनायां प्रभावितानां जनानां साहाय्यार्थं तमिलनाडुसर्वकारेण सहायता घोषिता। मुख्यमन्त्री सी जोसेफ् विजयः अस्यां घटनायां ये प्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां परिवारेभ्यः 10,00,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिं घोषितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतसायं राष्ट्रपतिभवने नागरिकसम्मानसमारोहे पद्मपुरस्कारप्रदानं कृतवती। पत्रकारः पी नारायणन्, टेनिस् क्रीडकः विजय अमृतराज, अभिनेतारौ मम्मुट्टी तथा आर् माधवन्, गायिका अलका याज्ञिकः च प्राप्तपुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 31,00,100 पद्मपुरस्काराः घोषिताः आसन्। एतेषु 5 पद्मविभूषणं, 13 पद्मभूषणं, 13,100 पद्मश्रीपुरस्काराः च सन्ति। कृषिकृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अवदत् यत् यल्निनो कारणात् उत्पद्यमानस्य दुर्बलमानसूनस्य सम्भाव्यप्रभावस्य निवारणे भारतसर्वकारः कृषकाणां सहायतायै पूर्वसिद्धतां कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक स्वीर दे 7 बज रहे ने ते हुन तुसी सुनो आज दियां मुख खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे दूजे सिविल सम्मान समारोह विच पद्म अवार्ड प्रदान किए। डेरा सचखंड बलां दे अध्यात्मिक आगू संत निरंजन दास जी अते चाड़ू योद्धा साबका IPS अधिकारी सरदार इंदरजीत सिंह संधू नू पद्म श्री नाल नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों नागरिक देवोभव की सोच नाल नागरिकों शासन के केंद्र विच रखने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो कारण संभावी माड़े प्रभावों नाल नजिठण विच किसानों की मदद करने लई पहला तो तैयारियां कर रही है। जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा बलों ने आउंदी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 दीआं तैयारियों के हिस्से वजो जम्मू के अमरनाथ बेस कैंप विखे एक व्यापक मॉक ड्रिल की थी। इस साल 22 जून 2026 तक पंजाब 5,00,000 तो वध माफ करना 2026 तक 5,00,000 तो वध श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर विच श्री माता वैष्णो देवी दी पवित्र गुफा दे दर्शन किए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड विच नवे नियुक्त होए उम्मीदवारों नू नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब सरकार वल्लों दिव्यांगजना दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू माली साल दौरान 125 करोड़ तो वध दी रकम जारी। पंजाब सरकार वल्लों अज मोहाली स्थित अमिटी यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 प्रोग्राम करवाया जा रहा है। स्थानक सरकारा बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अचनचेत निरीक्षण पिछों सफाई विच

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 7:03 हो रहे ने। ते हुन तो बस कुछ ही पलां च पेश करांगे प्रोग्राम सोनी सवेर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, सोहनी सवेर दे हुने सोहने जे वेले हो चुके वेला तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम सोहनी सवेर दा। ते सोहने जे सफर च मैं तुहाडी दोस्त शुभिता रवांगी जी तुहाडे नाल। दोस्तों, हर सवेर जिहड़ी है ना वो अपने नाल कोई ना कोई एहसास लेके आती है। किते उम्मीदां हुंदियां ने, किते दुआवां हुंदियां ने, ते किते मन च विश्वास हुंदा है कि अज दा जिहड़ा दिन है ना वो जरूर चंगा बीतेगा। सो लो जी, दिन की शुरुआत करिए रब दे शुकराने नाल, एक चंगी सोच नाल, ते चेहरे उत्ते सोहनी जी मुस्कान दे नाल, क्योंकि प्रोग्राम सोहनी सवेर चल रहा है। तो हुण अगले एक घंटे असी तुहाडा मनोरंजन तो करना ही करना सोहने सोहने गीतां दे नाल, लेकिन नाल दे नाल तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने बहुत सारिया महत्वपूर्ण जानकारी, तो दिलचस्प जानकारियां भी तुसी सुनोगे इस प्रोग्राम सोहनी सवेर च, नाल दे नाल सुनोगे सोहने सोहने गीत। तो दोस्तों, अपने काम करते रहो, चाह दियां चुस्कियां लैंदे रहो, ते तुसी बने रहो जी साडे नाल। प्रोग्राम शुरू हो चुका है सोहनी सवेर, ते जिवें कि क्या कि रब दे शुकराने नाल, रब दे इस एहसास दे नाल दिन दी करदे आ मिलके शुरुआत। सब तो पहला गीत सुनान जा रहे इस प्रोग्राम च जावेद अली ते कैलाश खेर दी आवाज़, बहुत सोहना गीत है। लो जी, करो इंजॉय।

0: वाह जी वाह, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे कि क्या चाहिए बंदे। बहुत सोहना गीत जिड़िया महिलावां ने उना दे जज्बे नू डेडिकेट जड़ा है वह किया गया ते ज्योति नूरा दी आवाज़ तुसी सुनिया, बहुत सोहना जिहा गीत। दोस्तों कहते हैं कि पल पल जड़ा ना वह सानू हर किसी नू मोटिवेट करते रहना चाहिए। सानू नहीं पता कि साढ़े जड़े बोल ने वह कदों किसी के दिल से बहुत गहरी छाप छड़ जान ते उना दे हौसले नू बुलंद कर जान। ते कोशिश करिया करिए किसी का हौसला ढाया नहीं करिए, सगों उसका हौसला बनिया करिए, हौसला फजाई करिया करिए, जो साडा भी दिन सोहना बीते तो जिस दे असी हौसला फजाई कर रहे हैं ना उदा भी सोहना बीते। ठीक उस तरह जिस तरह प्रोग्राम सोहनी सवेर तुहाडे लिए सोहनी सोहनी गल्लां दे नाल सोहना सोहना प्रोग्राम जिहड़ा है वह चल रहा है। तो हुण प्रोग्राम सोहनी सवेर च अगे होर भी बहुत सारिया जानकारियां हले तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने, लेकिन हुण असी लवांगे एक छोटा जिहा ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे जे अंतराल तो बाद।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोहनी सवेर तुसी सुन रहे हो। ते दोस्तों जिवें कि असी गल कर रहे सी कि जिहड़ा हर दिन है अपने नाल कुछ ना कुछ खास लेके आंदा है, ते जेकर असी 24 जून अज दी गल करिए ते अपने नाल ए दिन कोई खास याद जिवें कि हर कोई हर दिन जड़ा कोई ना कोई खास याद, कोई खास घटना या फिर किसी महान शख्सियत दी याद लेके आंदा। ठीक इस तरह

कैलाश खेर दी आवाज़ तो सुन रहे से जी, बहुत सोहना जो गीत। तो दोस्तों प्रोग्राम सोहनी सवेर च छोटी जी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होर तुहाडे नाल सांझी करनी है। जिवें कि बरसात का मौसम आता है दोस्तों, तो बाज़ार च ना जामुन की बहार आ जाती है। खट्टे मिठे स्वाद वाले जड़े गहरी बैंगणी रंग के यह जड़े फल है ना, यह बहुत पोषक तत्वों का खजाना है जी। इस फाइबर है, आयरन है, वाइटामिन सी है, तो कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी इस होंगे ने। ब्लड शुगर कंट्रोल कर, पाचन में सुधारण, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने, ते हार्ट जिहड़ी हार्ट की हेल्थ है, दिल की सेहत है, उन्होंने भी बेहतर बनाने च मदद करता है। तो दोस्तों पर कई बार गलती जिहड़ी असी कर बैठे हो है कि इनू इनटेक जिहड़ी है, इनू खाना किवें है, किन्ना खाना है, यह सारिया गल्लां जाननियां बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। कॉम्बीनेशन कई बार दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, जिन्हों का ध्यान रखना एक्सपर्ट्स का मनना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेकर तुसी जामुन खा रहे हो तो उहदे नाल केला ना खाओ, सेब ना खाओ, पपीता ना खाओ, नाशपती ना खाओ, यह कॉम्बीनेशन जिहड़े ने वह गलत होंगे ने। ज़्यादा जामुन खाने के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स ने दोस्तों, इतना लो ब्लड प्रैशर, कब्ज़ की समस्या, एसिडिटी, गैस, गले च जलन, तो एलर्जिक रिएक्शनस भी हो सकते ने। तो इन्हां गल्लां दा तुसी बस ख्याल रखना है, ते फल जिहड़े मौसमी ने उन्हां दा असी स्वाद भी चखना है। लेकिन हर चीज़ जिहड़ी है जेकर आपां लिमिट च खावांगे ते ओह फायदा देगी। तो दोस्तों हुण घड़ी दी जिहड़ी सुइयां ने प्रोग्राम सोहनी सवेर नूं इत्थे ही खत्म करन दी जिहड़ा इशारा कर रहीआं ने, ते हुण सोहनी सवेर नूं इत्थे आपां विश्राम, सोहनी सवेर प्रोग्राम नूं इत्थे आपां विश्राम दिंदे आं। उम्मीद करदी हाँ कि अज दीआं जिहड़ीआं गल्लां, विचारां ते गीतां ने जिहड़े तुहाडी सवेर च कुछ मुस्कान, कुछ चंगे एहसास ते कुछ सोहने पल जरूर जोड़े होंगे। दोस्तों याद रखियो, जिंदगी हमेशा वड्डियां खुशियां नाल नहीं दोस्तों, सगों छोटिया छोटिया नेमतां नाल भी खूबसूरत बनती है। इसलिए जो मिले उसका शुक्र करते रहो, जो है उसकी कदर करते रहो, ते जिथे भी जाओ अपने बोलना अते अपने मुस्कान नाल किसी का दिन जरूर सोहना बनाओ। इसे सोहनी सोच नाल मैं तुहाडी दोस्त शुभिता हुण लैनी आ जी प्रोग्राम सोहनी सवेर चों तुहाडे तों इजाजत। फिर मिलांगी एक नवी सवेर, नवीआं गल्लां ते सोहणे सोहणे गीतां दे नाल। उदों तक लई अपना ते अपने परिवार दा तुसीं ख्याल रखो, चढ़दी कला च रहो सारे, ते जांदे जांदे प्रोग्राम सोहनी सवेर च गुरदास पान ते दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत सुनदे जाओ।

0: हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम सोनी सवेर। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन तो बस कुछ ही पलां च तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार प्रभात, 8:15 बजे तुसी सुनोगे मॉर्निंग न्यूज़ ते 8:30 बजे तुसी सुनोगे खबरां पंजाबी च।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात

0: की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर दे 8:43 हो रहे ने ते हुन समा हो रहा जी प्रोग्राम महक पंजाब दी दा ते पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म जी आया नू। सन 2002 च फिल्म आई। इस फिल्म चों हरभजन मान, मनप्रीत ते अमन नूरी दा गाया बहुत सोहना जिहा गीत है। लो जी करो इंजॉय गीत।

साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।

प्रोग्राम चल रहे जी महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम च आखिरी गीत सुना जा रहे हैं फिल्म जिन्ने मेरा दिल लुटिया चो गिप्पी गरेवाल दा गाया गीत। लो जी एंजॉय करो।

पंकज उदास साहब ने। दोस्तों कहिंदे ने कि हर रिश्ते नूं शब्द दी लोड़ नहीं हुंदी, कुछ लोकां दी नेड़ता ही एक जिहा अहसास पहुँचाउंदी है जिस नूं सिर्फ दिल ही समझ सकता है। कई बार किसी दा साथ, किसी दीआं गल्लां ते किसी दी मौजूदगी जिंदगी नूं होर खूबसूरत बना दिंदी है। ते इन्हां ही जज्बातां नूं लै के हाज़र है ते पेश करन जा रहे अगली पंकज उदास साहिब दी ए बेमिसाल पेशकश ए गज़ल।

0: वाह जी वाह दोस्तों, हुने हुने तुसी सुनिया पंकज उदास जी दी बेहद खूबसूरत गज़ल। सचमुच दोस्तों कुछ एहसास ऐसे हुंदे ने जिन्हां नूं शब्दां विच बयान करना औखा हो जाता है, ते पर गज़ल जिहड़ी है उस नूं बड़ी नज़ाकत नाल दिल तक पहुँचा दिंदी है शब्दां नूं। दोस्तों मुहब्बत दा सफ़र भी बहुत अजीब हुंदा है। कई बार कोई शख्स साडी जिंदगी विच हौली हौली बिना किसी शोर तों अपनी जगह बना लैंदा है, ना पता लगदा है कि कदों ओह अजनबी तों अपना बन जांदा है। दोस्तों कुछ जिहड़े रिश्ते ने ओह इक पल लई नहीं बनदे, ओह हौली हौली दिल च उतरदे ने। इक मुस्कान, इक गल, इक मुलाकात अते फिर पता ही नहीं लगता कि कदों कोई साड़ी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। यही एहसास मेहदी हसन साहब की इस खूबसूरत गज़ल च सुनन नूं मिलदा है। आओ महसूस करदे हां ए नरम जे जज्बात मेहदी हसन साहब की आवाज़ च।
1: जी एक और आपकी फरमाइश है वो सब होगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी बड़ी पहले से फरमाइश आई हुई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सारा।

0: 下一个吗 ？Thank you。
1: दोस्तों जिंदगी च कुछ रिश्ते ऐसे होंदे ने जिन्हां दी अहमियत सानू उदों समझ आती है जदों साडे कोल नहीं रहिंदे। कई बार किसी की मौजूदगी इन्नी अपनी हो जाती है कि उस तो बिना हर खुशी ही अधूरी लगन लग पैंदी है। दिल दे इन्हीं नरम अहसासां नू बहुत ही सादगी ते खूबसूरती नाल अपनी आवाज़ च परोया है चंदन दास जी ने। कई बार मुहब्बत का असल अहसास उदों हुंदा है जदों असीं अपने आप तो पुछते हाँ कि जे ओ ना होवे ता की घट रहा जाएगा। आओ जी इन्हीं जज्बातों महसूस करते हैं तो सुनते हैं चंदन दास जी की दिल नू छू लैण वाली गज़ल।

0: महसूस करता है। इसे सोनी महफिल नूं इत्थे ही विराम दिंदे आ। मैं तुहाडी दोस्त शुभिता हुण तुहाडे तों गज़लां दी इस महफिल च लैनी है इजाज़त। फिर मिलांगी कुछ नवीआं गज़लां नवें अहसासां ते नवें अल्फाज़ां दे नाल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर दे 10 बज रहे ने। हुण पेश ने अज दियां मुख खबरां। ब्रिक्स देशां ने दहशतगर्दी, साइबर खतरियां ते आलमी सुरक्षा चुनौतियां दा मुकाबला करन लई आपसी सहयोग वधाउण दा सद्दा दित्ता है। कतर दे अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल फोन ते रास लफान शहर विच होए हादसे च 12 भारतीय नागरिकां दी मौत ते दुख प्रगट कीता। भारत ने पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर दे हालात बारे पाकिस्तान दी टिप्पणी दी सख्त आलोचना कीती। क्या पाकिस्तान मनुखी अधिकारां दे कान तों ध्यान हटाउण दी कोशिश कर रहा है। भारत ते अमरीका दरमियान तजवीजशुदा दुवल्ले व्यापार समझौते की समीक्षा लई नवी दिल्ली च उच्च पदरी मीटिंग। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान वल्लों मौसम ते अलनीनो प्रभाव अते खेतीबाड़ी ते इस दे असर बारे एक जायजा मीटिंग कीती। पंजाब दे मुख चोण अफसर आनंदता मित्रा ने पंजाब विच कल 25 जून तो शुरू हो रही वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सूद SIR अधीन सूबे दियां मानता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां नूं नुमाइंदियां नाल मीटिंग कीती। पंजाब सरकार वल्लों दिव्यांगजना दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू वित्तीय साल दौरान 125 करोड़ तो वध दी राशि जारी। पंजाब सरकार वल्लों अज मोहाली स्थित MIT यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 दा आयोजन किया जा रहा है। पंजाब दी जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल वल्लों फाजिलका जिले च 33.55 करोड़ की लागत नाल मुकम्मल हुए 3 प्रोजेक्टा दा उद्घाटन। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते 26 जून तक गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होने बारे येलो अलर्ट जारी। अते फीफा फुटबॉल विश्व कप पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान नूं 5-0 नाल हराया। ऐसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।
3: इंग्लैंड दी धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाश।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। साडे स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक इस वेले सवेरे दे 10:05 हो रहे हैं ते हुण वेला हो चुका है तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम हलो फरमाइश दा। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो, अपने मन पसंदीदा गीत सुन सकते हो। उहदे लई तुसी नंबर डायल करना है जी 0181 2342173। ते लो जी करो फिर तुसी कोशिश इस प्रोग्राम च शिरकत करन दी। तद तक लई सुनो अरिजीत सिंह दी आवाज़ च इस सोहना जगीत फिल्म यंगिस्तान चों।

ठीक है जी, जरूर कर दें तुम्हारी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने ली, धन्यवाद जी। नील कमल फिल्म चो मोहम्मद रफी का गाया गीत है, इन्हों की फरमाइश। हाले भी कुछ समय बाकी है, फटाफट कॉल करो प्रोग्राम च शिरकत ते अपने मन पसंदीदा गीत तुसी सुनो। प्रोग्राम हैलो फरमाइश आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है।

0: प्रोग्राम हालो फरमाइश चल रहा है ते हुन कड़ी दे सोईयां ते उंज खत्म करन वाले इशारा कर रही है प्रोग्राम दिया, लेकिन लास्ट कॉलर से जरूर लवांगे। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैडम जी मैं पॉल बोलदा सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
1: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा भी, धन्यवाद जी।
0: हाँ जी, फिर केड़ा गीत सुनोगे जी तुसी?
1: गीत मैडम सुना दे उपकार फिल्म दा मुकेश जी दी आवाज विच दीवानों से ये मत पूछो।
0: ठीक है जी, तुसी लास्ट कॉलर हो, तुहाडी फरमाइश असी जरूर पूरी करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
1: मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद जी। लो जी, उपकार फिल्म चो मुकेश दा गाया गीत, इन्हां दी फरमाइश जरूर पूरी करांगे। ते अज जिन्हां जिन्हां दी भी कॉल साडे नाल इत्थे कनेक्ट हुई है, जिन्हां ने प्रोग्राम च शिरकत कीती उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हां दी कॉल्स नहीं भी लग पाईआं उन्हां दी भी इत्थे अटेंडेंस लग चुकी है। सब दे मन पसंदीदा गीतां ते जिहड़े जिहड़े गीत असें प्ले कीते सब ने इंजॉय कीते होणगे, असीं इही उम्मीद करदे हां। अज दा दिन तुहाडा बहुत सोहणा बीते, चढ़दी कला च रहो, तुसीं सब सोहणी सेहत तंदरुस्तियां रब तुहानू सारयां नू बख्शे, यही उम्मीद है। इसी लास्ट जिहड़ा गीत है इहदे नाल मैनू अपनी दोस्त शुभता नू दो इस प्रोग्राम हालो फरमाइश चो इजाजत, ते जांदे जांदे इंजॉय करो मुकेश दा गाया गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters, ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत

0: और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 103.6 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप के जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती। ये प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो रोज़ाना 11:05 ते शुरू हुंदा और 12 बजे तक तुसी इस प्रोग्राम नाल जुड़े रहिंदे हो। इस प्रोग्राम दे विच अगर तुसी भी हिस्सा बनना चाहुंदे हो तो साडा वट्सएप नंबर है जी 9465536077 9465536077। इस नंबर ते तुसी सवेरे 10 बजे तो लैके 10:30 बजे दे विच अपने सुनेहे साडे तक पहुँचा सकते हो। फिर जिन्हां नूं ते पता सी उन्हां ने ते सानू भेज दित्ते और ढेरां दी तादाद ते भेजे। कई नाराज़ भी हुंदे होणगे कि साडे मैसेज पढ़े नहीं जांदे, पर कोई गल नहीं, मैं यही कहांगी कि आकाशवाणी जलंधर नाल तुसी इन्ना को प्यार करदे हो, हुण तक तुहानू पता चल ही गया होएगा कि पूरी पूरी कोशिश रहिंदी है कि सारे दे सारे नाम असी पढ़ जाइए, क्योंकि साडे भी मन नू बड़ी संतुष्टि मिलती है। लेकिन कई वारी इस तरह हो जांदा कि तुसी समय की घाट करके पूरे मैसेज नहीं पढ़ सकते। सो कोई गल नहीं जी, रोज़ाना दे प्रोग्राम दे विच तुहाडी नाराज़गी बिल्कुल नहीं चलनी, क्योंकि असी पूरी शिद्दत नाल तुहाडे नाम बोलते हैं और तुसी भी बड़े प्यार नाल अपने नाम सुनते हो, अपने साथियों के नाम सुनते हो जिन्हां दे नाम तुसी भेजे है। सो धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम तुहाडे नाल इस वेले जुड़ी हुई है स्टूडियो च तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वधवा। फिर मेरे वालों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। प्रोग्राम दा आगाज मीका सिंह दी आवाज़।

जहाज भी पहुंचे ने। तुहाडे सारयां दी रली मिली पसंद ते शाजिया मंजूर दी आवाज़ एक गीत तुहाडे सारयां दे रेडियो सैट ते लाओ फिर आनंद माणो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारिक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

अंसारी। जिला रोपड़, जिला रोपड़ पिंड पक्कू माजरा। तो हाजिर ने जी सुरिंदर ननुआ, कुलवंत, सुखजोत, भुपिंदर और मनजोत ननुआ। सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर और रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो ये हाजिर हो चुके ने जी। सतनाम सिंह गिल पिंड पक्की खुर्द डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो पहुंच चुके ने। और अगले सुनेहे नाल गांव जाखोद राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ये भी पहुंचे ने। करणवीर हाउस पॉल, करणवीर सिंह पॉल सारे ही अपने परिवार दे नाल पहुंचे ने जी सराभा नगर जलंधर तो। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया है शादरा दिल्ली तो वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा और ए वी चंडीगढ़ वालों नाल लैके आते हैं जी। राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। मैसगेट नाभा वाले भी साढ़े को पहुँच गए ने। नाम सोमदत्त, ज्योति राणी, कैरव गुरमन्नत, शुक्रिया बहुत बहुत जी। और अगला सुनेहा अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा ते भाई सुच्चा सिंह पाठक ये भी पहुँच गए ने साढ़े कोल। और पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डाबवाली तो कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा राणी, शैलेंद्र कुमार, बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी ते अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी, आसमा खातून, आफताब, मेहताब, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी ये भी पहुंच गए ने। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। दत्तरेंगी तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा पहुंचे ने। अर्शदीप सुरजीत सिंह अमरकोट तो और दादा अश्विनी गोयल बजीतपुर कातियां वाली फाजिलका तो विजय गोयल हाजिर हुए ने जी। और रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशबद सिंह राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो पहुंचे ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो पहुंचे ने जी। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया है कोटकपुरा तो हरपाल सिंह गिल, अमनजोत गिल, मुदित गिल, सुखदेव सिंह पक्के स्रोते ने जी। ते नाल कहंदे जी प्यारे पंछी मिठू तोता, बंसो तोती, बंता सिंह ते जैकी चैन नाल आए ने इन्हां दे। तुहाडे सारिआं दी रली मिली पसंद है जी जसबीर जस्सी दी आवाज़। तुसी गीत सुनना चाहुंदे हो ते ये कुछ सिखाना भी चाहते ने, शायद है ठुमका मारना सिखाना चाहते ने। चलो असी रल के इन्हां दा गीत सुनते हाँ, देखते हाँ कुछ गिद्दा ते भंगड़ा ते सिखा के जाणगे।

पिंड अलीपुर नेड़े छीटा वाला तो प्यारा सिंह सिद्धू अलीपुरिया मनदीप सिंह सिद्धू ते बेटा रणदीप सिंह सिद्धू इंग्लैंड तो पहुंचे ने। और मनीला फिलीपीन तो मदन मोहन लहर सरबजीत संजू नीतिका अजय एंजल लाडला पोता अर्नव लहर और इन्हों का सारा परिवार साढ़े को हाजिर है। कुलवंत कुमार सुनीता फलक कोशिश कुलवंत कुमार सुनीता फलक कशिश सारे काठपाल परिवार पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो ये पहुँचे ने जी। पटेल नगर मलोट तो हाजिर ने डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप ते आरजू जाजोरिया ते नाल गुड्डू भी आई है। मोहल्ला आनंद विहार वार्ड नंबर एक नेड़े होली एंजल स्कूल वार्ड नंबर एक मलोट तो पूरे ही पते दे नाल है पहुंचे ने जी। किते भी इधर उधर नहीं जा सकते तुसी। जसविंदर कौर प्रधान हरमिंदर सिंह बलविंदर कौर ते गुरपिंदर कौर ये हाजिर हो चुके ने। पिंड कबूलशाह खुबन जिला फाजिलका तो सत श्री अकाल भेजी है बलतेज नवजोत हरमन हैप्पी हैरी ते सारा ही परिवार। पिंड शाहपुर जाजन तहसील डेरा बाबा नानक राजवंत सिंह रंधावा निशान सिंह फौजी अमरीक पेंटर ये भी पहुंचे ने। मंडी अरनीवाला तो बलविंदर बुट्टर गोरा बुट्टर गुरसांझ कुलदीप भुल्लर मकैनिक ये भी पहुंचे ने। विक्की मायल संतोष मायल रोनी ते पूरा ही मायल परिवार साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो हाजिर ने। जगदीश कुमार मक्कड़ अरविंद मुकेश नीरज भूविन ते पूरा ही मक्कड़ परिवार पिंड कबूलशाह खुबन डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो पहुंचे ने। जाते जाते तो सारियां दी फरमाइश पूरी कर दिए भी गर्मी बड़ी है तो फरमाइश है रणजीत कौर ते मुहम्मद सदीक दी आवाज़ च गीत सुनन दी ते फिर पक्षी मंगवा रहे ने वह भी कलकत्ते। आओ फिर प्रोग्राम का आखिरी गीत तुहाडी सारयां दी पसंद आ।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है

0: नमस्कार। प्रोग्राम वसदे बेड़े लैके हरप्रीत हाजिर है जी।
1: जी प्रोग्राम वसदे बेड़े लैके अर्चना भी हाजिर ने। ते की हाल चाल है हरप्रीत तुहाडे?
0: मेरा हाल चाल अर्चना जी बहुत वधिया है, और ज़्यादा वधिया उदों हो जाता है जदों मैं रेडियो आना हुंदा है। और कोशिश करदी हाँ कि सिर्फ अज का दिन नहीं, हमेशा ही खुश रहा, अपना ध्यान रखने की पूरी कोशिश करदी हाँ। अगे कहिंदे हुंदे सीगे कि अपने वड्डिया का ध्यान रखदी हाँ, छोटिया का ध्यान रखदी हाँ, घर का ध्यान रखदी हाँ, पर नहीं, हुण मैं कहना शुरू किया और करना शुरू किया कि मैं अपना ध्यान रखदी हाँ।
1: बिल्कुल हरप्रीत, अपना ध्यान असी सारे जाने ही हुण बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर दिता है, क्योंकि वो कहिंदे ना मी टाइम मेरी जिंदगी, तो उहदे नाल जुड़ियां हुंदियां अपनी जिंदगी दियां गल्लां जिहड़ियां सारियां सवानियां ने ना, सारियां नूं ही सर्विस दिंदियां रहिंदियां घर दे विच।
0: जी जी,
1: घर दा इह कोना साफ कर लिया जावे, वह आण वाला उहदे वास्ते नींबू पानी बना के रख लिता जावे, जे घर दे विच कोई बुजुर्ग है तो देख लिता जावे कि उहनां दी सारी सुख सहूलत दियां चीज़ां उन्होंने कोल हैगी हैं, ते किते ना किते नज़रअंदाज साड़ी अपनी सेहत हो जांदी है
0: जी। और ऐसी करके कि हुण असी अपने आप नूं नज़रअंदाज ना करिए तां बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल रही है। कुछ उहदे विच साड़ी सरकार बहुत ज़्यादा हैल्प कर रही है जागरूकता फैलाउण दे विच, कुछ ऐ बीड़ा तुसीं कह लो कि ऐ उपराला स्कूल कॉलेजेस वह भी कर रहे हैं कि जागरूकता इस तरीके दे नाल कि असी अपने आप नूं स्वस्थ ते तंदुरुस्त घर बैठे किद्दां रख सकदे हाँ। और उहदा जिहनूं कहिंदे हिंग लगे ना फटकरी वाली गल हो जांदी ना, वह एक सरल जिहा माध्यम हैगा कि योगा करके।
1: जी क्या बात है जी, जदों असी योगा की गल करते हाँ तो 14 to 28 June तक असी मना रहे हैं दिहाड़ा सारे दे विच अवेयरनैस फैलाउण वास्ते। तो हर वरे ना योगा डे जिहड़ा हुंदा है वह अपने आप दे विच जिहड़ा एक उपराला है वह थीम लैके हाजिर हुंदा है। तो इस वरे का थीम की है
0: तुसीं दसो
1: भी, जिहड़ा थीम है वह है जी योगा फॉर हैल्दी एजिंग। असी वड्डे तो होना है, वड्डी उम्र वाल नूं भी वधना है, पर वह हैल्दी यानी कि तंदुरुस्ती दे नाल वधना है।
0: एग्जैक्टली जो 15वां सैलीब्रेट किया जा रहा है, यदा परपज़ ही यही हैगा। 21 June नूं हर पासे इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया सी, पर यह नहीं कि सिर्फ 21 June नूं मनाया गया सी तो खत्म हो गया, हमेशा ही चलता रहना चाहिए। और योगा दे विच जे असीं देखिए कि योगा की करता है, सिर्फ एक काम नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा बेनीफिट्स है। जिहड़ा सब तो वड्डा बेनीफिट मैनू लगता कि अज की डेट के इन्नी जिंदगी दे विच दौड़ भज हो गई है, टेंशना ने उहदे विच जिहड़ा साडा दिमाग है कि तुसीं कहो कि हाँ जी, जे मैं तुहानूं पुछां तां तुसीं कहो जी मैनूं बड़ा स्ट्रैस है, तुसीं मैनूं पुछो मैं कहांगी बड़ा स्ट्रैस है, आपां किसे तीजे बंदे नूं पुछ लिया कि वह भी कहेगा बड़ा स्ट्रैस है। तो एक स्ट्रैस जिहड़ी एक चीज़ है ना, एक जिहड़ा बोझ हैगा, असीं सारे अपने सिर ते लद के अपने नाल ही चलदे पए हां।
1: बिल्कुल जी, जदों असीं हरप्रीत पुराने वेलियां की गल करते सीगे ना, तो योग ध्यान करना शायद साड़ी जिहड़ी मिट्टी तो ही सानूं वरदान दे विच मिलिया होया, पर तेज़ रफ्तार की जिंदगी दे विच असीं किते ना किते ध्यान लाउणा अपनी सेहत दे बारे जिहड़ी जागरूक होना उहदे बारे असीं कोसों ही दूर हुंदे चले गए। उहदा नतीजा उहदा सिट्टे वजों इह होया कि अज असीं उत्थे खड़े हाँ जिथे मुड़ तो सानूं उही चीज़ां करनियां पै रहियां ने जिहदे वास्ते जिहड़ी साड़ी जिंदगी है उह तंदुरुस्त हो सके, साडा जिहड़ा शरीर है उह वी तंदुरुस्त हो सके।
0: योगा दे विच सिर्फ एक्सरसाइज़ या कुछ आसन नहीं होंदे, इहदे विच जिहड़ा असीं साह किस तरीके दे नाल लैंदे हाँ, किन्ना साह लैणा ते किन्ना साह छड्डणा किद्दां करना, वह बहुत मैटर करता और साड़ी काफ़ी साढ़े अंदर दियां बीमारियां नूं भी दूर कर दिंदा है
1: जी।
0: एक सही पैटर्न दे नाल चलना, जे तुसी कहो कि तुसी मैनू कहो कि हरप्रीत मैनू दस कोई आसन हुणे दस या मैं तुहानू कहां, वह गलत है। किसी माहर दे जिन्हों कहिंदे उन्हां दे हेठां इहदी प्रॉपर ट्रेनिंग लिती जावे, गाइडेंस लिती जावे, तो फिर असी उस चीज़ नूं घर बैठे उन्हूं अपनाइए। जरूरी नहीं कि वड्डे वड्डे पुठे सीधे हो के असी आसन करन लग पैना पर एक सिंपल दियां भी जिंदगी दे विच चीज़ां होंदियां ने, जिंदगी नूं जिन्ना सिंपल कर सकदे आ करन दी कोशिश करनी चाहीदी है
1: जी।
0: ते बाकी जदों असी योग दी गल करदे आ, जदों असी ध्यान लगाउण दी गल करदे आ, उदों प्रोग्राम वसदे वेड़े दे विच जिहड़ा ध्यान लगदा ना उदों लगदा जदों संगीत इहदे विच शामिल हो जांदा है।
1: क्या ही बात है जी,
0: हाँ जी
1: बिल्कुल गल तुहाडी ठीक है।

0: तो मैं मेंटेनेंस लूंगी, एक परमानेंट इंटरिम मिलती है जो कि
1: जी
0: सेक्शन 24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट है। एक तुसी सीआरपीसी दी 125 दे विच भी मेंटेनेंस ले सकते हैं।
1: ठीक है।
0: इहदे विच एक होर बड़ा फैक्टर है मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड कस्टडी।
1: ओके
0: बच्चा किदे कोल रहेगा?
1: जी बिल्कुल।
0: तुसी मन्नोगे इहदे विच, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट है, उत्थे जज साहबान बैठे हुए ऑनरेबल जजिज ने, वो फैमिली दे हेड वर्गा रोल अदा करते हैं।
1: ठीक है।
0: वो लॉ तो है जो है, बट उन्होंने बच्चे का वेल बींग्स देखनी है, बच्चे की हेल्थ देखनी है, बच्चे की एजुकेशन देखनी है, और कौन बंदा उस चार पांच चीजा कठिया दे पाएगा, वो मां या बाप। लेकिन जो बच्चा अबोध है, छोटा है, वो मां दे कोल ही मेनली कस्टडी रहती है, ऐसा पक्का रूल नहीं है लेकिन रहती है।
1: ठीक है।
0: बट कोर्ट्स उस बच्चे की कस्टडी दे सकते ने, सोल कस्टडी दे देंगे ने कि हुन तो यह बच्चा माँ कोल रहेगा या बाप कोल रहेगा।
1: ठीक है।
0: ज्वाइंट कस्टडी दे देंगे ने।
1: ठीक है।
0: ज्वाइंट कस्टडी में दोनों रख सकते ने, या विजिटेशन दे देंगे कि बच्चा माँ कोल रहेगा, पापा उसनों मिल सकते ने।
1: ठीक है।
0: बच्चा बाप कोल रहेगा, माँ उसनों मिल सकती है। सो मैं बार बार इस चीज़ का बहुत जोर नाल कह रहा, क्योंकि ये मैट्रीमोनियल केसिस क्योंकि ज़्यादा होने के कगार ते ने, साड़ी गवर्नमेंट कह लिए मेरी जुडिशरी
1: जी बिल्कुल
0: ये उत्ते बहुत सतर्क है। उन्होंने जिन्हें भी आउटकम्स देंदे, मैक्सिमम सेटलमेंट, मेडिएशंस, बच्चों का बिहेवियर्स, बच्चों की कस्टडीज, लेडीज की मेंटेनेंस, देयर एलिमनीज, वो सारा कुछ कोर्ट वालों बहुत अच्छे ढंग नाल देखे।
1: बहुत सारे कानून जड़े ने वो इस दे तहत बने हुए ने
0: जी। अगर मैं दसा तो कि हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954
1: जी।
0: अगर असि डोमेस्टिक वायलेंस लीए, देयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005
1: जी।
0: क्योंकि आने वाले समाज के बीच जो चले आ रहे हैं, हुण दे कुछ टाइम तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया
1: जी।
0: तो जिन्नी ज़्यादा ये हो रही है, बट मैं दोबारा कहना चाहना कि साढ़े इंडिया में डाइवोर्सिज उन्ने नहीं है जिन्ने बाहर ने, लेकिन हुण तादाद 2020 तो बाद डाइवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
1: उहदा तुसीं कारण भी दस्या
0: है, कारण दस्या
1: है ना कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए ने,
0: उन्होंने लग गया इंडिविजुअलिज्म जो मेरा है, मैं कल्ली रह सकती हाँ।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये बच्चे उदों तक कल्ले रह सकते जो तक ये जवान ने, इन्होंने हजे नहीं पता कि एक स्पाउस की जरूरत किस एज ते जाके पैंदी है।
1: जी बिल्कुल। उन्होंने लगता है कि आर्थिक तौर पर भी असी बड़े मजबूत हो गए हैं और इस करके सानू जरूरत नहीं है किसी की भी।
0: 22-22, 25-25 लाख के पैकेज लड़कियां बैठिया हुई ने जो बैंगलोर ने, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे ने, बट जदों वो पैसा दिमाग चढ़ बोलदा ना जी, फिर शायद गल्लां चलदियां ने, कितने कितने ईगो कलैश हुंदा होएगा
1: जी जी,
0: जिन्हों साढ़े डेविशेंसी मैं तो कह दिंदे हुंदे कि टेंपरामेंटल इशूज
1: जी,
0: आपस च लड़ाई का कारण फाइनेंस बन सकता है, लड़ाई का कारण तुहाडी हैबिट्स बन सकदियां ने
1: जी।
0: इवन मैं एक ऐसे तलाक भी सुने ने कि लेडी कहती है, लड़की कहती है कि मेरा हसबेंड खराटे बहुत जोर जोर दी मारदा, खराटे मारदा
1: जी,
0: ते तलाक हो गया, कोर्ट ने मन्निया उसनूं, दिस इज अगेन अ मेंटल हरासमेंट। सो कानून एक अलग चीज है, बट बिकॉज साढ़े इतने कल्चर के बीच जी मैरिज है ना जी, इनू असं इंस्टीट्यूशन कहने।
1: बिल्कुल।
0: ये दो कुनव्या की, ये दो परिवारों के बीच एक संबंध है
1: जी। बिल्कुल। और
0: कल्ले लेवल ते नहीं देखा जा सकता।
1: हाँ, नहीं देखा जा सकता। और ये वाकई ही व्याह सिर्फ कुड़ी मुंडे का नहीं हुंदा, दो परिवारों का।
0: दैट्स व्हाई असीं इनू इंस्टीट्यूशन कहने जी।
1: हाँ।
0: इन आर सिस्टम मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन।
1: बिल्कुल।
0: साढ़े तो जो सामने बैठ के सारी मिलनियां होंदियां शक्ति प्रदर्शन होंदे ने
1: जी।
0: जो साडा कल्चर है, उस कल्चर दे नाल ब्याह होने का मतलब होंदा कि इहदे जन्म जमांतर दा है, अज इस दा नहीं है।
1: बिल्कुल। अच्छा विक्रम जी, एक गल होर कि पहलां तां अरेंज मैरिजिज होंदियां सी, ते अज दे टाइम दे विच बहुत सारे जिहड़े बच्चे ने अपनी मनपसंद दा ब्याह करवा रहे ने, यानी कि लव मैरिजिज करा रहे ने, उस दे बावजूद भी ये इन्ना ज़्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे ने, क्यों डोमेस्टिक वायलेंसेस जिहड़ियां ने ओह वध रहियां ने?
0: अरेंज मैरिज की, अरेंज मैरिज जो होंगी है, असं कहने अरेंज मैरिज, बट वो माँ बाप की मत होंगी है
1: जी जी।
0: अरेंज मैरिज माँ और बाप का बहुत अच्छे तरीके एनालाइज करके बच्चे लिए एक रिश्ता, बेटी लिए बेटा या मेरा
1: जी,
0: या बेटे लिए बेटी लभना, मैं उस स्टेज पर हाँ जो मैं कर रहा
1: हूँ।
0: सो दिक्कत की होंगी है कि उस माँ बाप का, समाज का, आस पास जाने पछाने लोगों का बिच अटैचमेंट होंगी है, लेकिन ऐसे केस इस तो बाद भी स्पॉयल हो जाते हैं, इस तो बाद भी, लेकिन रेशो इज वेरी लैस, रेशो इज वेरी लैस। राइट। लव मैरिज, लव मैरिज का मतलब मैं तो समझ नहीं आया जी आज तक वैसे था
1: जी,
0: है ना
1: जी,
0: मैरिज है क्या? अरेंज मैरिज विच लव नहीं हुंदा?
1: हाँ, वो हुंदा
0: हुंदा होएगा, हुंदा है, बिल्कुल हुंदा है, ऑल वी ऑल आर देयर
1: जी।
0: नाउ

0: डिसीजन कर लाइक लड़की दा है या लड़के दा है, गलती डिसीजन दी है
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि लव मैरिज जिहड़ियां हैं ने सक्सेस सारियां नहीं हुंदियां होणगियां, ऐसा भी नहीं है। सारियां अरेंज मैरिजिज बहुत अच्छियां हुंदियां होणगियां, ऐसा भी नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: बट मैक्सिमम स्पॉयल होने वाली लाइफ जिहड़ी है असीं सोचदे हां कि लव मैरिज है, मैं समझदा कि उहदे विच इक प्री मैच्योर जजमेंट एंड डिसीजन ने, मे बी दैट इज कॉल्ड फैसिनेशन।
1: हाँ बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल के फैसिनेशन जिहड़ी है ओह ही
0: मैं
1: अग्गे
0: देख
1: लैके
0: लिया,
1: जांदी
0: अच्छा
1: है।
0: लगा मुझे, अच्छा
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: सुंदर है,
1: जी
0: बॉडी सुंदर है। माइंड यू कैन नॉट रीड एनी बॉडीज माइंड।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तुसी परिवार नहीं देखिया उसका, लड़की ने लड़का देखिया है पर परिवार बारे नहीं पता उसनू।
1: बिल्कुल, क्योंकि रियलिटी वाल जिहड़ा है वो बच्चे जाना ही नहीं चाह रहे।
0: मैं कह रहा सी हुण किसे लेवल ते कि जिंदगी रील और रियल दे विच बहुत डिफरेंट
1: बहुत
0: है।
1: बिल्कुल ठीक गल है।
0: मैं तो इसका कई बार मैनू कहना चाहिए कि जो मैं पता नहीं, बट मैं रील नू बहुत ज़्यादा गलत करना किसे वेले।
1: जी जी
0: अजकल दे मेरे बच्चे साढ़े बच्चे छोटे, मैं समाजिक बहुत काम करदा नाल बच्चों नू मिलदे हां कॉलेज स्कूल जाके, असी उत्थे दसदे हां कि आ जिहड़ी 4-5-6 इंच की चीज़ तुहाडे हत्थ च है ना, ये तुहाडी पूरी जिंदगी खराब कर
1: और
0: देगी।
1: देखो किन्नी एनर्जी किन्ना टाइम जिहड़ा वो इस ते वेस्ट कर
0: तुसीं
1: रहे
0: एक
1: ने।
0: बार रील खोल के बह जाओ, 1 घंटा गया जी,
1: गया बिल्कुल।
0: उस नू देख के एक जरा प्री मेच्योर माइंड है जो एडोलेंस एज है 18-19-20 साल वाली, जो कि साढ़े करियर बनाने की एज है, उहदे विच रील आ गई। इस रील ने रियल लाइफ नू खत्म करता,
1: जी, और रियलिटी जड़ी जो खत्म हो
0: दूसरी
1: जाती है और उस तो बाद रील आ दे जित जो, क्योंकि ये फैसिनेशन है।
0: फैसिनेशन,
1: रील जड़ी है वो तड़ा।
0: आकर्षित होना
1: हाँ
0: अच्छा है, आकर्षण बहुत अच्छा है, क्या वो आकर्षण ब्याह तो बाद अपनी पत्नी या अपने पति वल नहीं हो सकता?
1: बिल्कुल हो सकता है जी,
0: हो सकता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिकॉज वो जड़ी चीज बनी गई है जो वर्ण किया गया, मीन अपने समाज कहते हैं कि वर्ण करके लेके आए आप, है
1: हाँ
0: ना,
1: जी।
0: जो तुम वर्ण कर रहे हो, जो तुम लेके आए हो ढोल धमाके नाल, तो ऐसा की वजह हो जाती
1: हाँ
0: है कि 2 महीने बाद उत्ते पेट्रोल पाने की दिक्कत आ जाती है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओदा मतलब साडे समाज दे विच साडे मापे सानू उस ट्राइबल की काउंसलिंग नहीं करते।
1: जी बिल्कुल।
0: मेरी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है, दोनों पास्यों कोई ना कोई एक या दो बंदा खड़ा हो जाता हीरो बनने लिए, कोई गल नहीं देख लांगे।
1: हाँ बिल्कुल ठीक गल है कि जदों भी कोई विवाह तो बाद झगड़ा शुरू हुंदा है, कोई ना कोई धिर चो खड़ा होके कह दिंदा है कोई गल नहीं तू एक काम कर दे
0: देख लांगे
1: मैं
0: जी,
1: देख लांगा
0: मैं
1: मैं
0: देख लांगा।
1: खड़ा,
0: क्या
1: और वो जिहड़ा बंदा खड़ा हुंदा है वो थोड़ी देर बाद वो पिछे हट जांदा है।
0: जदों स्पॉयल सारा कुछ हो जाए वो पीछे
1: हाँ
0: हट
1: वो
0: जाए।
1: पिछे हट
0: सो
1: जांदा है।
0: क्या ऐसे दो बंदे उस एक बंदे नूं थल्ले करने लिए नहीं खड़े हो सकते?
1: हाँ
0: कि यह सवाल दो बच्चों का है, दो बच्चों की जिंदगी का है, उन्हों की गोदी दे एक बच्चे एक बेटी का है,
1: जी बिल्कुल।
0: वो समझाने वाले लोग है ने, बहुत है ने, मैं नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन शायद घट ने।
1: बिल्कुल जी, कानून बहुत सारे बने हुए
0: कानून
1: ने।
0: बहुत ने, कानून हर जगह पर तुहाडे नाल खड़े है,
1: जी
0: लेकिन अज एक होर ट्रेंड हो गया, जे बच्चे नूं थोड़ी बहुत तुसीं गल कह भी दित्ती बच्चा चाके तुहाडे उत्ते डोमेस्टिक वायलेंस दी
1: जी
0: कंप्लेन,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये दिक्कत भी है कानून दी।
1: क्योंकि ये सारा कुछ जिहड़ा पश्चिम देशों तो भी आ रहा
0: आया
1: है।
0: आया जी,
1: बिल्कुल है ना, पश्चिम देशों तो ये बच्चे साढ़े सीख रहे ने इस वेले कि असी अपना माँ बाप के उत्ते ही कानून लागू कर दांगे।
0: देखो मैं क्या तुहानू रील
1: हाँ जी
0: फिल्म भी ये उत्ते ही बनिया हुई हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: 3 घंटे बिच 4 जिंदगियां दिखा देंदियां ने, राइट। रील जिहड़ी आंदी ने ये भी बाहरों आईया हुई ने, अपने बना के उत्थों दे आइडियाज उत्थों ते रील बन रही है। इत्थे
1: जी
0: जदों साडे सिर दे उत्ते एक फैंटैसी सवार हो जाएगी, दिस इज फैंटैसी काइंड ऑफ थिंग,
1: हाँ
0: हुण फैंटैसी सवार है कढ़नी कित्थे है? हुण तुसीं देखिया होगा कई बारी लोग मार्शल आर्ट्स दे दिखाण लग गए ने, इन रियल सरकमस्टांसिस यू कैन नॉट परफॉर्म।
1: जी बिल्कुल।
0: बंदा आंदा इदा अटैक करेगा तो मैं इदा बच जाऊंगा, नहीं बचा जाता। वो स्पैशलाइज लोग होंगे ने
1: हाँ
0: जिन्हें रील बनाई है, वीडियो बनाई है, वो एंटरटेनमेंट लिए बनाई है। सो साडे अबोध बच्चे उस चीज नूं दिमाग ते लैके चलदे ने।
1: बिल्कुल जी। और असीं यही कहांगे कि देखो व्याह दो परिवारां दा मेल है, ते इस करके व्याह तो बाद जिहड़े झगड़े ने कोशिश करो कि ना ही होण।
0: सबर जिहड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्ची लई भी और बच्चे लई, लड़के लई।
1: बिल्कुल जी। और तुसीं साडे सुनण वालियां नूं चलदे चलदे की सुनेहा देना चाहोगे?
0: मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स एक कलंक है समाज दे उत्ते,
1: जी
0: क्योंकि ये जिसे समझ आ जाए कि मेरे घर जिहड़ी नूह आई है मेरी बेटी भी किसी घर नूह बन के जाएगी,
1: जी
0: ये शायद ता खत्म हो गया कि किसी के घर एक बेटा है या किसी के घर एक बेटी है,
1: जी बिल्कुल।
0: छोटी छोटी फैमिलीज हो गई ने, लेकिन तुहाडे घर च कोई तो बेटी होएगी।
1: हाँ
0: तुसी अपने घर आई नूह नूं जे सोच लो कि ये मेरी बेटी भी किसी के घर गई, जिम्मे परफॉर्म तुसी चाहते होंगे, क्या तुसी उस बेटी नूं सब कुछ दे सकते हैं?
1: जी
0: मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स विवाह के बाद दे लड़ाइयाँ झगड़े कस्टडीज ये खत्म हो सकते हैं अपने समाज के बीच, जे तुसी एक दूजे नूं इज्जत देनी सीख जाओगे।

0: थोड़ा सबर कर लोगे, थोड़ी रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट कर लोगे।
1: बिल्कुल जी, बहुत वधिया गल कही एडवोकेट साहब, और मेरे ख्याल सुनने वाले जरूर इस पर अमल करेंगे और जरूर जानेंगे कि क्यों ये डिस्प्यूट्स होंगे ने और की वजह है और किस तरह से ये डिस्प्यूट्स जड़े ने वो खत्म करने ने। एडवोकेट विक्रम शर्मा जी, तुम साढ़े स्टूडियो च आए, साढ़े नाल गल्लां बातें सांझियां कीतियां, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम
2: जी। ये तो असीं सुन रहे सीगे सांझ दे तहत विवाहित जीवन दे विच झगड़े अते हल संबंधी कानून ते जानकारी सानू दे रहे सीगे एडवोकेट विक्रम शर्मा जी, ते उन्हां नाल गलबात कर रहे सीगे प्रभजोत होरी। ते हरप्रीत, समझण दी गल सिर्फ इन्नी है कि कानून साडी हिफाजत वास्ते बनाया गया, ते जरूरत ये बनती है कि थोड़ा जिहा असीं अपने मानसिकता नू बदलीए
3: जी,
2: समझिए इस चीज़ नू कि समाज दे विच कोई भी चीज़ हो रही है उहदे वास्ते असीं खुद ही जिम्मेवार हुंदे आ, ते उदों इन्नी गल जदों बिगड़ जांदी है फिर असीं कानून दे सहायता वास्ते पहुँचदे हाँ। जरूरी यह समझण दी है कि कानून हिफाजत वास्ते है, साडी सुरक्षा वास्ते है, बट उहदे उस तो इलावा सानू अपनी हिफाजत, अपने समाज नू एक चंगी सेध देण वास्ते अपनी मानसिकता नू बदलना बहुत जरूरी।
3: बिल्कुल सही कहा अर्चना जी। अगे वधदे अगले सिलसिले वाल, पर उस तो पहला एक छोटी जी ब्रेक और फिर लेके आने अपना अगला सिलसिला मेरी कलम तो।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: ब्रेक ले ली और ब्रेक तो बाद एक बार फिर हाजिर हाँ। प्रोग्राम चल रहा वसदे बेड़े ते सिलसिला शुरू करन लग गया मेरी कलम तो। ते आज मेरी कलम तो अनुमान तहत असी सुनन जा रहे कहानी भूआ तारो, सुरिंदर दीप कौर जी की आवाज़ दे विच।
4: मेरी कहानी है भूआ तारो। गली विच भीड़ लगी हुई सी, सारा पिंड इकट्ठा होया सी। आवाजा आ रही सन कि भूआ तारो मर गई, भूआ तारो मर गई। सारे पिंड विच रौला पै गया सी। भूआ तारो नू पिंड दे सारे लोग ते बच्चा बच्चा प्यार करदा सी। भूआ तारो जगत भूआ तारो बन गई सी। इसे पिंड विच जम्मी सी, जवान होई सी, गुड्डियां पटोले खेडे सी, गिद्धे पाए सी, पिंगा झूटियां सी। ते अज इसे ही पिंड विच इकल्ले कारी होके पर्दी मर गई सी। कर कर भूआ तारो दियां गल्लां हो रही सन। किन्ने सोहणे नैन नक्शा वाली तूत ते लगर वांगू लंबी गोरे निछो रंग दी कुड़ी सी। करमां वाली गरीब घर विच पैदा होई सी। उसदा बापू करम सिंह खेतीबाड़ी दा माड़ा मोटा कम करदा सी ते बेबे किशनो घर दा कम करदी सी। घर विच मझां रखियां होईयां सन। तारो दा असली नाम अवतार कौर सी। लाड प्यार नाल सारे उसनू तारो ही कहिंदे सी। ओह मापियां दी इकलौती धी सी। पता ही ना लगा कदों तारो दा बचपन बीत गया सी। तारो ने दसवीं पास कर ली सी। तारो विच कोई वल वलेवा नहीं सी, ज़्यादा चुप ही रहिंदी सी, सिद्धे सादी कुड़ी सी। माँ किशनो तां उसनू वेख वेख के जीउंदी सी। तारो जवान हो रही सी। जदों हसदी सी उसदी सज्जी गल विच टोवा पैंदा सी ते जिस विच पिंड दे मुस्टंडे डिगदे फिरदे सी। किशनो नू अपनी धी दा बहुत फिकर हुंदा सी। वो उसदे मत्थे ते सुरमे दा काला टिक्का

0: ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि

0: प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम

फौजी वीरों, मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों जय हिंद। तोरे मनोरंजन लिए लैके हाजिर हाँ कुछ हिंदी फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का पहला गीत तुहाड़े नज़र करांगी एक विलन फिल्म चो लिया गया गीत। आवाज़ा दित्तिया ने श्रद्धा कपूर और अंकित तिवारी ने। गीतकार ने मनोज मुंताशिर और संगीतकार अंकित तिवारी।

प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। फौजी वीरो, प्रोग्राम च अगला गीत तुहानू सुणाउण जा रहे हैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया चो। आवाज़ां दित्तियां ने अरिजीत सिंह ते श्रेया घोषाल ने, गीतकार अहमद अनीस कुमार ते संगीतकार ने जावेद अहमद ते नाल उन्हां दा साथ निभाया शारिब तोशी ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। भारत ने अक़्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी

0: कहते हुए सख्त एतराज जाहिर किया कि उसने इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है और पाकिस्तान की इस बात के लिए भी शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि उसे एक इस मुकाम पर रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की रायजनी करके जवाब में ये बात कही। पाकिस्तान की जानिब से रायजनी का जवाब देते हुए जनाब हरीश ने मुआविन सदर की हैसियत से उसके तर्ज अमल की सख्त तनकीद की और जम्मू कश्मीर पर भारत के देरीना मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जामे बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। तेहरान में भारत के सफारतखाने ने मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। हालिया मुस्बत वाकयात और मजमू सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनज़र सफारतखाने ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो सोच समझ कर और एहतियात के साथ ईरान का सफर करें। भारतीय बाशिंदों को यह भी सलाह दी गई कि वो अगले नोटिस तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफारतखाने ने यह भी कहा कि वो जो भारतीय बाशिंदे इस वक्त ईरान में हैं जो नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं वो इंतहाई एहतियात से काम लें, हालात से बाखबर रहें और चौकसी बरतें। उनसे यह भी कहा गया कि वो लगातार सफारतखाने की बाजाबता वेबसाइट देखते रहें। सफारतखाने ने मदद के लिए हंगामी नंबर भी जारी किए हैं +989128109115 +989128109115 +989128109102 +989932179359 भारतीय बाशिंदे सफारतखाने से ईमेल के जरिए भी cons.tehran.mea.gov.in से राब्ता कायम कर सकते हैं। नीति आयोग के नायब सरबराह डॉ अशोक कुमार लाहिरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। डॉ लाहिरी ने यह भी बताया कि इस अरसे में भारत की बरामद 1.84 खरब डॉलर तक पहुंच गई जबकि दरामद में 6.5% का इजाफा हुआ। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरेट मेट्रो स्टेशन पर तामीराती काम का इफ्तिताह किया।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन
0: है। नामरीगारों से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट से सरकारी मुलाजमीन और तमाम पेशावर अफराद की रोजमर्रा की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा, इसमें शिवाजी स्टेडियम भी शामिल होगा और जनकपुरी वेस्ट से इंद्रलोक तक मुसाफिर बिला रुकावट सफर कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय सनतों के वजीर एच डी कुमारास्वामी ने आज जोर देकर कहा कि स्टील की सनतों को डिजिटाइज करना मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नई दिल्ली में स्टील के शोबे की डिजिटलाइजेशन पर चिंतन शिविर से खिताब करते हुए उन्होंने भारत के मुतहरिक स्टील शोबे की कारकर्दगी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने 2018 के बाद से स्टील की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे मुल्क की अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। वजीर मौसूफ

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय

0: पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +9899321793। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और

0: के सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रोकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई

0: अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
3: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतने के लिए। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, ICC T20 महिला विश्व कप के मुकाबलों की पल पल की खबर। भारत के सारे मुकाबलों का, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलों का अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर के FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ए जलंधर केंद्र है।

रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने अनिल कुमार। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च प्रोग्राम दा पहला लोक गीत टप्पे।

श्रोताओं, बहुत सारे करिश्मा कपूर पर फिल्माई हुई की थी, इसी के साथ बहुत सारे ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे श्रोताओं के नाम हम एक बार आपको बता दें जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक आलौकिक चंचोलिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरखुलूस आदाब कबूल करें, एक ही कलाकार कार्यक्रम को हम सुन रहे हैं दादा।

बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ जा रही हूँ, जो कि आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। संदीप मक्कड़ भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। नमस्कार जी, पहला जी प्यार के पहले पंकज शर्मा जी, मुझे आपकी ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपने मैसेज भेजा ये हमें दिखाई दे रहा है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, अमर, रमेश कुमार खत्री, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल कौर, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता जी, राम राम जी के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 1991 में पहली फिल्म प्रेम कैदी से इन्होंने करियर की शुरुआत की, ये जानकारी हमें दे रहे हैं राजेश सिंह जी। इन्हें घर में प्यार से बेबू कहते हैं, बेबो कहते हैं, इन्हें घर में प्यार से लोलो कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी जोड़ी गोविंदा के साथ इन्होंने कई सुपरहिट पिक्चर दी, राजा बाबू, दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल। आज इनके जन्मदिन पर इन्हें बहुत बहुत बधाई। यही लिखा है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन जी ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक ही कलाकार में आज करिश्मा कपूर जी के बारे में बहुत उम्दा बातें बता रही हो। लवली रोमांटिक गीत में मैं तो रस्ते पे जा रहा था। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी।

नेहापुरी, एकता, शम्मी, बोधी, सुनील, वीकेपुरी ते आरएसपुरी। इस तरह ज़िला लुधियाना मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन। पुरानी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, गौतम जैन, रसगुन्ना जैन, नगीना जैन। मुल्लापुर दखा मंडी तो बिट्टू जैन ते मनोज जैन, समता जैन, मनु जैन ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। दोस्तों इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुनदे हैं प्रोग्राम का अगला गीत हरभजन मान की आवाज़ में।

करीब 45 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत वाले 7 सिंचाई अते बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टां दी सौगात दित्ती है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर अते लद्दाख विच शनिश्चरवार तक गरज चमक अते तेज हवावां नाल मीह पैण दी पेशीनगोई कीती है। ते हॉकी इंडिया ने 5 तो 14 जुलाई तक बरतानिया दे दौरे लई 24 मैंबरी जूनियर महिला टीम दा ऐलान कर दिता है। ए सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। पेश है प्रोग्राम सदा बहार गीत।

नजरें मिलीं तो दिल ने एक खूबसूरत ख्वाब बुन लिया। एक मुस्कान ने जैसे पूरा जहान चुन लिया। मोहब्बत की बातों का क्या कीजिए जनाब, इसने तो पत्थरों से भी धड़कता दिल सुन लिया। प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार नगमे। प्रोग्राम का अगला गीत आ गले लग जा फिल्म दा, आवाज किशोर कुमार दी, गीतकार साहिर लुधियानवी ते संगीतकार ने राहुल देव बर्मन।

कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वो दिल की गहराइयों में बस बस जाते हैं। मिलना तो बस एक बहाना होता है, ऐसा लगता है जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। जिस तरह तुहाडा ते साडा रिश्ता। प्रोग्राम चल रहा है सदा बहार गीत। प्रोग्राम च अगला गीत तुहाडे नज़र करांगी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म दा। आवाज़ आशा भोसले दी, संगीतकार खयाम।

जिंदगी की राहों में हर ख्वाब पूरा नहीं होता, हर चाहत का अपना मुकाम नहीं होता। कुछ कमी रह ही जाती है हर कहानी में, क्योंकि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे, वैसे तो अमावस पर

कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल के बेहद करीब रहते हैं, उनकी यादें हर पल हमारे साथ रहती हैं। शिकायत तो नहीं होती उनसे कभी, बस उनकी कमी खामोशी में महसूस होती है। हुणे तुसी सुन रहे सी सदा बहार गीत, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम के 4:30 बज रहे हैं। हुण असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलते हैं, जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा कीता केवड़ चीरा। राग आसा विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उचारिया गया ए फरमान इस बात नूं स्पष्ट करता है कि ओ प्रभु सब तो वड्डा है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उसका कितना वड्डा विस्तार है इस बाबत भी कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। जो इतना वड्डा है, सृष्टि का रचायता ते पालक है, तां ते फिर उस अगे सीस चुकाना ही बनता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जप बाणी दी 28वीं पौड़ी तो लैके 31वीं पौड़ी तक बयान करते ने कि उस प्रभु नू नमस्कार है, उसनू सदा नमस्कार है। आदेस तिसह आदेस, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। सरवण करदिया जप बाणी विचों इना पौड़ियां दा गायन, पौड़ियां दा गायन कीता है भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आदेश तिसह आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जब बाणी विचों इन्हां पौड़ियां दा गायन कीता सी भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने, ओ सर्प कला समर्थ प्रभु दे अगे हर कोई नतमस्तक है। पावें ओ कोई साधारण जीव है जां फिर वड्डे तो वड्डा राजा भी है, क्योंकि ओ सृष्टि दा रचयिता आप मुक्तिदाता है, कुल सृष्टि नूं तारन वाला है।

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। श्रवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां पासों इस शब्द।

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर अलंकार सिंह।

ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से

0: तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां घर आ जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
0: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए,
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: आरबीआई कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं समूह गान, ए आकाशवाणी है, सुन महल मां।

0: आजू आजू आजू शिंगारा सिंह जी आजू बच्चे वाले आजू।
1: जय हिंद जी। रुलिया राम जी जय हिंद।
0: जय जी शिंगारा सिंह जी बच्चे वाले की हाल चाल है तेरा?
1: हाल चाल तगड़े ने जी, तुहा सुनाओ ठीक ठाक हो?
0: हाल चाल तगड़ा। देखो शिंगारा सिंह जी
1: जी,
0: हालात जेड़े है, हालात तो आउंदे है और हालात चले जाते हैं
1: जी,
0: पर हालात के लिहाज के नाल बंदे की हालत पर असर पैंदा है।
1: पैंदा जी, क्योंकि समा मुड़ के दोबारा नहीं आता।
0: सो इस करके जदों हालात चंगे आउंदे है या हालात माड़े आउंदे है, दो ही तरह दे ना।
1: सही गल।
0: सो इस करके हालात दे नाल लड़ना या हालात दे अगे खड़ना या हालात तो डरना
1: या हालात मुताबक चलना
0: या हालात मुताबक बंदोबस्त करना।
1: सही गल
0: है कि नहीं? हुण ए ताड़ी सोझी है, ताड़ी समझ है। हुण कई बंदे ता ऐसे है जिहड़े पहाड़ां नाल ही मथा ला लैंदे है।
1: सही गल।
0: कई बंदे ऐसे है भी मथा लाउण तो पहले ही मथा टेक जांदे है।
1: सही गल। बथेरे बंदे मिलते हैं,
0: बथेरे बंदे मिलते हैं,
1: हौसला ही नहीं हुंदा,
0: हौसला नहीं हुंदा, हिम्मत नहीं हुंदा
1: जी।
0: सो इस करके गल तां कीती है शिंगारा सिंह जी, बहुत सारिया घटनावां ते बहुत सारिया दुर्घटनावां हालातों चो पैदा हुंदी
1: है। सही गल
0: है कि नहीं
1: जी?
0: हालात बाहरी भी हो सकते हैं, हालात जिहड़े अंदरूनी भी हो सकते हैं
1: जी।
0: सो इस करके दोनों ही पक्षां दे उत्ते फैसला तुसी करना है।
1: देखो गल हालातों की चली आ, अंदरूनी की गल करते तुसीं, अंदरूनी जिहड़े हालात माड़े होने आ वह बहुत खतरनाक है जी।
0: बाहर नालों भी?
1: बाहर नालों ज़्यादा खतरनाक आ। बाहर तो बंदे नूं पता हुंदा मेरा दुश्मन आ, घर च तो पता ही नहीं हुंदा दुश्मन कौन आ,
0: कौन है
1: जी। तो इस करके हालात जिहड़े आ सब ना माड़े आ और सब ना खतरनाक आ,
0: खतरनाक है। सो इस करके देखो शिंगारा सिंह जी, चाहे हालात बाहरी है चाहे अंदरूनी है
1: जी,
0: पर यह है कि जिदा आप पहलू जिक्र किया है कि ताड़ी समझ है उन्होंने नजिठना, उन्होंने मुकाबला करना, चाहे तुसी गल नू बिगाड़ लो, चाहे तुसी गल नू संभाल लो है ना, जां सुलझा लो, ये दोनों पक्षां ते ही है, ये ताड़ी समझ है। क्योंकि देखो जिदा सियाने कहते भी एक होवे कमला समझावे बेड़ा, बेड़ा होवे कमला दा समझावे केड़ा।
1: बस बस गल उही है जी। देखो इदां दे हालात जिले पैदा हो जाण तां बंदे नू चुप रहण च भलाई आ, जिहड़ी चुप्पी आ हजार मसलियां दा हल आ।
0: हल है देखो हस के जाइए शिंगारा सिंह जी, ये ऐसा हल है
1: जी
0: भी हिंग ना लगे फटकड़ी ते रंग चोखा
1: चौखा। सही गल।
0: जे किते हालात दे मुताबक बंदा जिहड़ा समझदार बंदा है वह चुप रह जाए या चुप बट जाए, क्योंकि जिहड़े तत्पड़ते दे विच जवाबदेही है ना
1: जी,
0: जदों आप जवाब

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। वणज ते उद्योग मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी व्यापार डेलीगेशन का भारत दौरा दोहां देशों विचकार तजवीजशुदा दवल्ले व्यापार समझौते नूं अगे वधाउण वाला एक अहम कदम है। भारत ते रूस 2030 तक अपने दवल्ले व्यापार नूं 100 अरब अमरीकी डालर तक वधाउण दे टीचे नाल काम कर रहे ने। पंजाब भलके तो वोटर सूचियां दे महीना भर चलण वाली विशेष गहन सोध SIR शुरू करेगा। पछमी बंगाल के कोलकाता च तारतला विखे एक उसारी दिन गोदाम ढहण कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। त्रिशा जौली ते गायत्री गोपी चंद की भारतीय जोड़ी US ओपन बैडमिंटन महिला डबल्स मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच गई है। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने नवी दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैसमिन ग्रेयर नाल उन्होंने वफद नाल मीटिंगां पूरियां कर लईआं ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत अमरीका व्यापार चर्चा की प्रगति का जायजा लिया और दोहां देशों विचकार आर्थिक भाईवाली को होर मजबूत करने के ढंग तरीक की कोख की है। उन्होंने राजदूत ग्रीर की अगवाई और दोहां देशों की शलाघा की। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल जैसमिन ग्रीर की अगवाई हेठ 22 से 24 जून तक नवी दिल्ली के दौरे पर सी। वणज ते उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत ते अमरीका विचकार तजवीजशुदा दवल्ले व्यापार समझौते नूं अगे वधाउण वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ते संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अज नवी दिल्ली में रणनीतिक रक्षा भाईवाली के ढांचे तहत रक्षा सहयोग नूं अगे वधाउण लई एक मीटिंग की। रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मीटिंग की सह प्रधानगी अंतरराष्ट्रीय सहयोग बारे संयुक्त सकत्र अमिताभ प्रसाद और UAE के ब्रिगेडियर जनरल जमाल इब्राहिम मुहम्मद इब्राहिम अलमारज़ोकी ने की। इस विच अगे कहा गया कि चर्चा के मुख विषय रक्षा सनती सहयोग का प्रसार करना, नवीनता को उत्साहित करना, विशेष तकनोलॉजियों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा मजबूत करना सन। भारत और रूस अपने दवले व्यापार 2030 तक 100 अरब अमरीकी डालर तक वधाने के टीचे काम कर रहे हैं। क्रैमलिन के बुलारे दमित्री पेस्कोव ने अज कहा कि दोहां देशों विचकार व्यापार पहले ही स्थिर ते वाधे का रुझान दिखा रहा है जो मौजूदा समय में करीब 60 अरब डालर है। उन्होंने कहा कि दोनों देश वक्त-वक्त खेत्रों में आर्थिक सहयोग वधाउण लई वचनबद्ध ने। मास्को में 12वें प्रिमकोव रीडिंग्स फोरम में बोलते हैं पेस्कोव ने भारत को दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही अर्थव्यवस्था विचों एक दस्या और इसकी विशाल संभावना उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देंदे पेस्कोव ने कहा कि भारत ने उन्होंने अगवाई में शानदार समाजिक आर्थिक विकास किया है। पंजाब भलके 25 जून तो वोटर सूचियां की महीना भर चलण वाली विशेष गहन सोध SIR शुरू करेगा। यह 24 जुलाई तक जारी रहेगी। पंजाब के मुख्य चोण अधिकारी CEO आनंदिता मित्रा ने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया कि अंतिम वोटर सूची 1 अक्तूबर 2026 प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों की रैशनलाइजेशन 24 जुलाई तक की जाएगी। मसौदा वोटर सूची 3 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। इतराज़ और दावे 3 अगस्त तो 2 सितंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। नोटिस की म्याद 3 अगस्त तो 28 सितंबर तक होगी। प्रक्रिया बारे जानकारी देंदे श्रीमती मित्रा ने दसिया
1: हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का पीरियड जेड़ा कि 25 जून तो लैके 24 जुलाई तक का है। 24,453 BLOs डिप्लॉय किए गए है। इस काम की महत्ता देखते हुए ये जेड़े सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स है इन्हों अपनी बेसिक डे टू डे ड्यूटीज तो रिलीव किया गया है ता जो कि वह फोकस कर सकन सिर्फ इसी काम के उत्ते 1 महीने तक। जेड़ी मैपिंग है मैपिंग साडे स्टेट दे विच 86.02% हुन तक हो चुकी है जो कि 1.84 करोड़ पीपल तक असी पहुंच चुके हैगे। हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन दा फेज जेड़ा होगा कि साडे BLO साहिबान हर घर दे विच जाके अप्रोच करनगे वोटर नू इलेक्टर नू ते ओना नू ओ दो परता दे विच फॉर्म्स देंगे जेनू की असी एन्यूमरेशन फॉर्म कहंदे हैं।
0: कुछ मीडिया रिपोर्टां कि जिन्हें वोटरां दी मैपिंग नहीं की गई उन्होंने नाम वोटर सूची विचों कट दिते जाणगे बारे स्पष्टीकरण दिंदे उन्होंने कहा
1: एक बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। कई बारी मीडिया दे विच भी एदा दे खबरां देखण नूं आंदे हैं। उस संबंध च मैं ब्रीफ करना चाहवांगी कि अनमैप्ड बंदा रैंड करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ

नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रदीप उर्फ डॉक्टर मनु मेहरबान, शिरोमणि उर्दू साहित्यकार जनाब राजेंद्रनाथ रहबर जी का शिष्य, आपके समक्ष कुछ गज़लें प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी गज़ल कि तमाम रात ही तारे शुमार मत करना, तमाम रात ही तारे शुमार मत करना, किसी के आने का तुम इंतज़ार मत करना, किसी के आने का तुम इंतज़ार मत करना। और हसीन लोग तो बेएतबार होते हैं, हसीन लोग तो बेएतबार होते हैं, हसीन लोगों का तुम एतबार मत करना, हसीन लोगों का तुम एतबार मत करना। और नहीं है इससे बुरा कोई काम दुनिया में, नहीं है इससे बुरा कोई काम दुनिया में, किसी निहत्थे पे भूले से वार मत करना, किसी निहत्थे पे भूले से वार मत करना। और कभी किसी से झूठा करार मत करना, कभी किसी से झूठा करार मत करना, अगर निभा नहीं पाओ तो प्यार मत करना, अगर निभा नहीं पाओ तो प्यार मत करना। और हदों में रहना मुनासिफ है मेहरबान सदा, हदों में रहना मुनासिफ है मेहरबान सदा, हदों को भूले से भी अपनी पार मत करना, हदों को भूले से भी अपनी पार मत करना। और पेश है आज के ताज़ा हालात पर मेरी ये गज़ल कि वो मेरा दुश्मने जानी महान हो जाए, वो मेरा दुश्मने जानी महान हो जाए, खुदा करे कि वो मेरे समान हो जाए, खुदा करे कि वो मेरे समान हो जाए। और तमाम देश करे रश्क देखकर इसको, तमाम देश करे रश्क देखकर इसको, मेरी दुआ है कि भारत महान हो जाए, मेरी दुआ है कि भारत महान हो जाए। और चलो कि मिलके करे ये दुआ खुदा के हजूर, चलो कि मिलके करे ये दुआ खुदा के हजूर, तमाम विश्व में अमनो अमान हो जाए, तमाम विश्व में अमनो अमान हो जाए। और बड़े मकान का मालिक है शहर भर में वो, बड़े मकान का मालिक है शहर भर में वो, उसे खबर नहीं कब बेमकान हो जाए, उसे खबर नहीं कब बेमकान हो जाए। और वो मुझको देखता रहता है चोर नजरों से, वो मुझको देखता रहता है चोर नजरों से, अजब नहीं वो कभी मेहरबान हो जाए, अजब नहीं वो कभी मेहरबान हो जाए। और तू एक ऐसी गजल मेहरबान लिख दे आज, तू एक ऐसी गजल मेहरबान लिख दे आज, वो एक शेर सुने और कदरदान हो जाए, वो एक शेर सुने और कदरदान हो जाए। और प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी एक और गजल कि ताज़ा हवा के झोंके दिल को लुभा रहे हैं, ताज़ा हवा के झोंके दिल को लुभा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। और उनके भी दिल में शायद जागी है चाह मेरी, उनके भी दिल में शायद जागी है चाह मेरी, मेरे ही गीत देखो मुझको सुना रहे हैं, मेरे ही गीत देखो मुझको सुना रहे हैं। और दुनिया ना उसको पढ़ ले जाने ना कोई उसको, दुनिया ना उसको पढ़ ले जाने ना कोई उसको, लिख लिख के नाम मेरा मुझको मिटा रहे हैं, लिख लिख के नाम मेरा खुद ही मिटा रहे हैं। और वो आए या ना आए ये तो है उनकी मर्जी, वो आए या ना आए ये तो है उनकी मर्जी, हम मेहरबान उनको दिल से बुला रहे हैं, हम मेहरबान उनको दिल से बुला रहे हैं। और अपनी एक और ताज़ा कलाम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमने हर वक्त तुझको सोचा है, हमने हर वक्त तुझको सोचा है, तुझको पूजा है तुझको चाहा है, और उसने दुनिया में क्या ना पाया है, उसने दुनिया में क्या ना पाया है, जिसके सर पर बड़ों का साया है, उसने दुनिया में क्या ना पाया है, जिसके सर पर बड़ों का साया है, और उसके

चेहरे पे है अजब सी खुशी, उसके चेहरे पे है अजब सी खुशी, जिसको चाहा था उसको पाया है, जिसको चाहा था उसको पाया है। हे प्रभु लाख शुक्र है तेरा, हे प्रभु लाख शुक्र है तेरा, मेरा होना तुझे गवारा है। और हाकिमे वक्त बन गए हो तुम, हाकिमे वक्त बन गए हो तुम, वक्त अब ये फकत तुम्हारा है। और कुछ तिथि किस तिथि को अदा करोगे कहो, कुछ तुम्हारी तरफ बकाया है। और पेड़ हिंदुस्तान का है पीपल, पेड़ हिंदुस्तान का है पीपल, कितना जां बख्श इसका साया है, कितना जां बख्श इसका साया है। और अपनी एक गज़ल और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्यार बिन जिंदगी अधूरी है, प्यार बिन जिंदगी अधूरी है, प्यार करना बहुत ज़रूरी है, प्यार बिन जिंदगी अधूरी है, प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और यूं तो मिलते हैं रोज वो हमको, यूं तो मिलते हैं रोज वो हमको, फिर भी अपने दिलों में दूरी है, फिर भी अपने दिलों में दूरी है। और दौर महंगाई का है ये साहिब, दौर महंगाई का है ये साहिब, काम करना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके चेहरे का हुस्न क्या कहने, उसके चेहरे का हुस्न क्या कहने, कितना सुंदर है कितना नूरी है, कितना सुंदर है कितना नूरी है। और मेहरबान आज जिस तरफ भी देखो, मेहरबान आज जिस तरफ भी देखो, जी हजूरी ही जी हजूरी है, जी हजूरी ही जी हजूरी है। और एक अपना ताज़ा कलाम मैं पेश कर रहा हूँ कि है अपनी मोहब्बत में दम आज भी, है अपनी मोहब्बत में दम आज भी, तुझे याद करते हैं हम आज भी, तुझे याद करते हैं हम आज भी। और तू परदेश में जाके चाहे रहे, तू परदेश में जाके चाहे रहे, मेरे दिल में तू है सनम आज भी, मेरे दिल में तू है सनम आज भी। और तुझे याद करता हूँ दिन रात में, तुझे याद करता हूँ दिन रात में, नहीं है मेरा प्यार कम आज भी, नहीं है मेरा प्यार कम आज भी। और महक इसमें फूलों की सी है बसी, महक इसमें फूलों की सी है बसी, है पाक अपनी उल्फत सनम आज भी। और घटा सी बरसती हैं आंखें मेरी, घटा सी बरसती हैं आंखें मेरी, तेरी याद में ये है नम आज भी, तेरी याद में ये है नम आज भी। और अपनी एक और गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ कि अपने हालात के सांचे में ही ढल जाता है, अपने हालात के सांचे में ही ढल जाता है, वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। और कदर वो मेरी मोहब्बत की करेगा एक दिन, कदर वो मेरी मोहब्बत की करेगा एक दिन, प्यार की आंच से पत्थर भी पिघल जाता है, प्यार की आंच से पत्थर भी पिघल जाता है। हमने माना कि ज़माना है ये महंगाई का, हमने माना कि ज़माना है ये महंगाई का, बच्चा मुफलिस का किसी तौर से पल जाता है, बच्चा मुफलिस का किसी तौर से पल जाता है। और बेहुनर पाते हैं सम्मान हर एक महफिल में, बेहुनर पाते हैं सम्मान हर एक महफिल में, खोटा सिक्का भी तो बाजार में चल जाता है, खोटा सिक्का भी बाजार में चल जाता है। हो अगर नजरे करम अल्लाह की इंसानों पर, हो अगर नजरे करम अल्लाह की इंसानों पर, वक्त इंसान पे आया हुआ टल जाता है, वक्त इंसान पे आया हुआ टल जाता है। और बेटी पर मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सर पर धूप कड़ी है लेकिन, सर पर धूप कड़ी है लेकिन, दूर है

पेड़ों का भी साया हो जाए की मिट्टी एक दिन, हो जाए की मिट्टी एक दिन, देह की आखिर सुंदर काया और उसमें थे अशकों के मोती, उसमें थे अशकों के मोती, हमने जब दामन फैलाया और भाग दौड़ की इस दुनिया में, भाग दौड़ की इस दुनिया में रिश्तों नातों को है बुलाया और देख के एक निर्धन को कलशब, देख के एक निर्धन को कलशब आंखों से आंसू लहराया और नन्ही सी गुड़िया ने आकर, नन्ही सी गुड़िया ने आकर

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रात दे ठीक 8 बजन वाले ने हुण तो कुछ ही पलां दे इंतजार तो बाद ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ 67A ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 2-ਲੇਨ ਸੜਕ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। इस मौके संबोधन करदिया उन्हां कहा कि यह प्रोजेक्ट इलाके दे लोकां लई आवाजाई नूं होर सुखाला अते सुरक्षित बनाएगा। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार लोकां दीआं बुनियादी सहूलतां नूं बेहतर बनाउण अते विकास कारजां नूं तेजी नाल अगे वधाउण लई वचनबद्ध है।
3: B67A तुसीं अंदाजा लाओ भई इहदी जिहड़ी डिमांड आ, जे मैं हैरान हो जाना, B67A तकरीबन बणदा जदों इह 50 करोड़ तक पहुंच जाऊगा। अज तकरीबन 48.64 करोड़ का

प्रोग्राम चल रहा है जी, जिंदगी हसीन है। इस प्रोग्राम दे विच अगली पेशकश अलका याग्निक दी आवाज़ दे विच क्रिमिनल मूवी तो एक गीत, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 9:30 ਚਰਚਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में

0: निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़

0: 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में

इस वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है।

0: आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।

0: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरा पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
0: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
0: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट, उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियाँ रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था।
1: जी
0: पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?

0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को, वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में

0: देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें
1: जी
0: प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं, आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे ज़रूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, वो शॉट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12 तक।
1: जी
2: फिर
1: जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है, और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस

0: कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीज़ों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
0: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ। एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू।
0: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे
0: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद दी मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
0: सॉल्यूशंस।
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स। एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamt of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर। And I don't know how to explain it, to be honest.
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा,
1: बिल्कुल
0: और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो कोई हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ, 4-5 महीने लगे

0: हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो तो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी, हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, वाई ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि उसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट्स रहे थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना चाहेंगे
0: जी
1: कि
0: जी
1: फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जी मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूं कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूज़िक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूज़िक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहाँ से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट चेस प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है,
1: बिल्कुल
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
1: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत का
1: जी
2: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्म भूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।

0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से. इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है. उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है. तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं. अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की.
1: मेरा जो एक एआई सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के

0: रहती है उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो एआई इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
0: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज दी DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रात दे ठीक 10 बज रहे ने, हुन वेला हो रहा है न्यूज हेडलाइंस दा। ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਸੋਧ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਗੜਾ ਰੋਡ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ 2026 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

0: मुकद्दर दा सिकंदर गीत मूवी दे इस गीत तो बाद अगले गीत दी फरमाइश ले अगले कॉलर जड़े है साडे कोल बिल्कुल तैयार ने अपनी फरमाइश लेके हेलो
1: हेलो राशि मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सुखबीर सिंह छाज दी बोलदा मैम सगरूर कोलों।
0: हां जी सुखजीत जी की हाल चाल है?
1: ठीक है मैम तुसी दसो ठीक हो जी?
0: आवाज तो पहचान लंदे तुसी है ना
1: जी मैं गया 2.5 साल हो गए उदन आया होया नु बाकी मैं थोड़ा ज्यादा प्यार करता जी मैं जलंधर चैनल नु वधिया चैनल है।
0: काफ़ी पुराने लिसनर्स जिहड़े हैगे
1: हो
0: है
1: गई
0: लहजे तो आवाज़ तो पहचान लैंदे आ ते सांझ काफ़ी पुरानी हुंदी है
1: हांजी बाकी सदे सारे आरजे पहचान लाने ने मैनू वैसे ही आवाज तो। हांजी हां
0: जी ते फिर संगरूर वाले ने अज गीत केड़ा सुनना है?
1: देखो मैंने दिन भर दी थकावट ते इधर एक फोन लग गए सारा कुछ ठीक हो जांदा जी।
0: वाइब्स ने ना रेडियो दी,
1: हांजी
0: रेडियो दियां वाइब्स ने इदा दियां माहौल ही इदा
1: हाँ
0: दा बन
1: बाकी
0: जांदा
1: मैंने
0: है।
1: सुने ना आरजे ने आवाजां बहुत स्वीट ने जी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
1: बहुत
0: जी
1: मजा आता
0: बिल्कुल
1: गल करके भी आनंद आता जी।
0: हुण तुहाडे आनंद दे विच असीं वादा करना चाहुंदे हां तुहाडा फरमाइशी गीत सुना के दस्सो
1: मैडम
0: केड़ा
1: जी
0: सुनना है?
1: प्यार जुगता नहीं दा ला दो जी गाना तुमसे मिल करना जाने क्यों और भी कुछ ज्यादा आता है।
0: चलो ठीक है जी शब्बीर कुमार ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां दे विच इह गीतां नूं जरूर सुनावांगे और इहदे नाल ही अगले जिहड़े साडे लिसनर्स ने जो कि वट्सएप ग्रुप ते वेट कर रहे ने अपने नाम ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋਕੂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਾਹੌਰ ਲੋਹਾਰੂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਸਬਾ ਚਿਲਕਾਨਾ ਤੋਂ ਨਦੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਨਦੀਮ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਆਲਿਆ ਅੰਸਾਰੀ ਅਰਹਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਮ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੋਮਦਤ ਜੋਤੀ ਰਾਣੀ ਕੈਰਵ ਗੁਰਮੰਨਤ मैसेज कर रहे ने। बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का मैसेज कि मैम कोई भी गीत सुना दो और पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका इन्हों का मैसेज और सारे की दिली मली फरमाइश ते 1985 दे विच आई मूवी प्यार झुकता नहीं दा बहुत ही हिट ट्रैक तुमसे मिलकर ना जाने क्यों आ रहा थोड़े रेडियो सैट्स से। और जेकर तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो सानू कॉल करो या साढ़े व्हाट्सएप नंबर पर सानू व्हाट्सएप करो।

0: प्यार झुकता नहीं मूवी तो तुसी सुन रहे सी गीत प्रोग्राम चल रहा है थोड़ी फरमाइश और साढ़े स्टूडियो दे विच पहुंच गए ने अगले कॉलर चलते हैं करते हैं उन्हां दे नाल गलबात। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सत श्री अकाल,
1: सत श्री अकाल जी। अपने
0: कौन सर बोल रहे ने?
1: श्री गंगानगर तो रेशम सिंह संधू जी।
0: संधु साहब गीत दी फरमाइश लेके आए हो गंगानगर तो।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गीत
0: अच्छा ते गीत केड़ा सुनना है?
1: है जी बचपन फिल्म दा, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे।
0: बहुत ही सोहनी
1: ते
0: फरमाइश।
1: हाँ जी, ते मेरा पोतरा जी छोटा अपना अपना गुरवंश सिंह संधू, ते पोतरी है जी उन्होंने वास्ते लाया जी परनीत सिंह संधू जी।
0: अच्छा उन्हां दे बचपन च तुसी उन्हां नूं बचपन
1: हाँ
0: मूवी
1: जी,
0: तो
1: हाँ
0: गीत
1: जी, हाँ जी,
0: सुनाना है ते
1: बचपन
0: अपना
1: वास्ते। हाँ
0: बचपन याद
1: जी,
0: करना है।
1: हाँ जी, हाँ जी, नहीं, बच्चे है जी। हाँ जी, हाँ
0: नहीं
1: जी,
0: नहीं
1: हाँ जी,
0: बहुत सोहनी फरमाइश है, बहुत
1: हाँ
0: पुराना
1: जी,
0: गीत और बहुत ही प्यारा
1: शुक्रिया,
0: गीत। बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया
1: जी, शुक्रिया जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है,
0: जी। तो फिर श्री गंगानगर वालियां दी फरमाइश बिल्कुल तैयार है और इन्हां दे नाल ही नाल असी शामिल कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस जिदे विच काफ़ी लोगों ने एनी सॉन्ग लिख के कोई भी गीत सुना दियो मैम जिहड़ा सानू व्हाट्सएप किया होंदा है। बेसिकली ओ इस वर्ड प्लेटफॉर्म ते अपना नाम सुनना चाहते हैं तो उन्हां दी है ख्वाहिश भी जरूर पूरी करांगे जिस तरह पसंदीदा गाने दी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी

0: मोहम्मद रफी दी आवाज़ दे विच सुन रहे सी तुसी गीत बच मूवी तो आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे और साढ़े स्टूडियो दे विच आ गए ने अगले कॉलर अपनी फरमाइश लेके सुनदे आ उन्हां दी की फरमाइश और करदे आ उन्हां नाल गलबात। हैलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी। मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
0: जी जी जी
1: मैम, मम्मी आकाशवाणी जलंधर के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: आकाशवाणी जलंधर को भी दूर दराज के अपने लिसनर से बात करना बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: पंजाबी आती है आपको?
1: नहीं मैम, पंजाबी थोड़ी बहुत मतलब समझ लेते हैं, लेकिन शुद्ध जैसे बोलने नहीं आती है जैसे आप लोग बोलते हो अच्छे से।
0: अच्छा, अच्छे से। चलो आज ट्राई कर तो। अब बोलो हमें आकाशवाणी, सानू आकाशवाणी जलंधर दे
1: सानू आकाशवाणी जलंधर दे
0: प्रोग्राम्स बड़े
1: प्रोग्राम्स बड़े
0: वधिया लगदे ने।
1: बढ़िया लगते ने।
0: देखा, इट्स वेरी सिंपल, इज वेरी स्वीट। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए आपको गीत कौन सा सुनना है?
1: पंजाब की तो कुछ बात ही अलग है मैम।
0: लोग की दुनिया च बस दे बथेरे, पंजाबी आदि शान वखरी।
1: जी जी तो आज मूवी का नाम रहेगा जी फकीरा।
0: फकीरा मूवी तो जी गीत
1: और उसमें गाने के बोल रहेंगे तोता मैना की तो कहानी पुरानी हो गई, और आप रहेंगी और सभी श्रोता रहेंगे जितने भी मुझे सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं।
0: जी जरूर सुन रहे हैं और आपकी फरमाइश हम अभी लाइव प्ले करेंगे किशोर कुमार
1: हाँ,
0: और लता मंगेशकर की
1: बहुत
0: आवाज
1: अच्छा जा
0: में।
1: रहा है मैम, धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद। लव जी पंजाबी भी सिखाती दसो, ऐसी की मल्टीटास्किंग कर रहे हैं इतने बैठे, और उसी मल्टीटास्किंग दा अगला पड़ाव व्हाट्सएप मैसेजेस सोनू रविराज गुलशन लकी बलदेव नगर जलंधर तो कर रहे ने मैसेज, और एदे ही नाल है निशु कंबोज गोरा कंबोज पंचन वली फाजिल का तो कर रहे ने मैसेज, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाक्षी सोनाली सोनम और आशीष बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तो कर रहे ने मैसेज। नेक्स्ट इज जसपुर उत्तराखंड दे लिसनर्स रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत मोहम्मद रेहान समरीन परवीन माहिरा नूर व्हाट्सएप दे राही लगा रहे ने हाजरी, और मामुलवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान तायड़े वसंत राव भोजने और पीएस वकर, मैं माफ़ी चाहनी हूँ बिकॉज ओ बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हिंदी वाले नाम ने पंजाबी च प्रनाउंस करने से, जे किसी का नाम ऊपर नीचे हो जाए तो असी माफ़ी दे अरदास लगा रहे हैं। अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सबाहत किदत हुजरे और रेहान शेख सांगली जिला जत शहर तो कर रहे ने मैसेज, और गुजरात गांधी ग्राम तो आई है अगली फरमाइश प्रवीण सोनी ते जगदीश जौहरी दी। इहदे नाल नाल शास्त्री नगर बीड़ शहर तो किसन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सायराज दे विशाल जी का मैसेज, और इन्होंने दोस्तों की फरमाइश से तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई ए गीत जड़ा है गा, तोड़े रेडियो सेट्स से आ रहे हैं, इंजॉय करो और इसी तरह बने रहो प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश के नाल। फोन कॉल्स ते व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए तुसी इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हो।

नानगत रणधीर बांगर गुरमेजो गौरव परवीन युगम वीरेन मन के रते मनराज जी का मैसेज और गाँव गाला जिला अंबाला हरियाणा तो राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन ते इन्हां दे परिवार के बाकी सदस्य सत श्री अकाल भेज रहे ने और उस तो बाद फरमाइशकर्ता की लाइन दे विच होर नाम फुलचौली तालुका पंडरपुर तो जाकिर मुलानी सुमैया सुबान समीर सलमा मुमताज़ दिलशाद नसीर बानूबी मुलानी और बादशाह मुलानी परवाज समेत इस प्रोग्राम दे विच हाजिर लगा रहे ने खुश नुमा महफिल सजी है और यह कह रहे हैं नई दिल्ली तो गुरमीत सिंह मीता जी साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली तो मैसेज कर रहे हैं फाजिलका पंजाब तो भूषण खेड़ा विशु लाडी विशाल शालिनी टिवानशी इन्हों का भी मैसेज आ गया है और असी शामिल भी कर लिया है धनौरी तेलीवाला तो निसार सलमानी नौशाद बेबी आली और अयान बाबू का मैसेज मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरा नरगिस खातून जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हाजिर लगा रहे हैं सुखवीर सिंह कोमलप्रीत रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो पता नहीं किन्नी वारी सानू मैसेज करनगे और किन्नी वारी अपना नाँ सुनने चाहक ने कॉल भी लग गई है मैसेज भी दो बारी पढ़ लिया फिर भी सानू ढेर सारे मैसेजेस कर रहे ने इस करके जदना जिन्हें जिन्हें नाम जोड़े है एक बार शामिल हो गए ने प्रोग्राम के कृपया दूजिया की वारी आन देन डॉली सिंह नवराज हिमांशी सलिंदर सिंह गुरदयाल सिंह चंडीगढ़ तो कर रहे ने मैसेज और कीर्ति वर्मा सिद्दिक वर्मा प्रियांशी वर्मा विशु वर्मा कृष्णा रानी और समूह वर्मा परिवार पिंड बुरजा तो कर रहा है मैसेज और इन्होंने सारे की फरमाइश तो मैं तुहानू सुनानी हाँ बीवी हो तो ऐसी मूवी तो गीत जो कि राजू जी चंडीगढ़ वाले ने सानू कहा सी प्ले करने वास्ते आ रहा थोड़े रेडियो सैट्स से

से आ रही कि पूरी पापा की गल करनी है, बस अपना फरमाइशी की दस है कि हाँ बस बड़ी देर दे फोन लगा रहे से, हूँ मिल गया बस ठीक है। और ये नाल ही बाजवा कलोनी गुरदासपुर वाले का नंबर लगाने सी कि जिन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है, प्रीतम चंद, अनमोल, दीपक, और उस तो बाद करनी खेड़ा फाजिलका पंजाब तो गुरदीप सिंह कटवाल, मीतो बाणी, सुखचैन राणो, परवीन, नवीन, अनमोल, बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरपक्ष, साहिबाते मिर्जा जी का मैसेज। और बार बार मैसेज कर रहे हैं कुछ दोस्त, और हूँ मैं उन्होंने मैसेजेस नहीं एंटरटेन करूँगी बिकॉज एक बार तो ज़्यादा असी इन्हों के नाम जड़े है ऑलरेडी इस प्रोग्राम के शामिल कर चुके हैं, और हूँ शामिल कर जा रहे हैं मुहम्मद अजीज़ से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों के अमृत मूवी तो गीत दुनिया में कितना गम है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था।

ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात है जी, क्या बात है। जिन्हें कीती ना कमाई उन्हें रज के की खाना। गल तो बिल्कुल ठीक है जी। चाहे असी पैसे की कमाई कर लिए, चाहे नाम की कमाई कर लिए, ये दोनों कमाइया ने ही साढ़े काम आना, तो साढ़े विहड़े साढ़े अगले

0: क्या बात है जी, क्या बात है। हेलो,
1: हेलो कमल भाई, नमस्कार जी। कमल
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: भाई बिट्टू बोल रहे हैं, दूरदर्शन बैठक मंडी
0: बिट्टू जी,
1: जिला।
0: बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी। क्या बात है, 2 मिनट निकल लगे नाल ढोल बंद करता, लता खुल गया दिया जी।
0: धन्यवाद जी। वो इदां ना, फिर बाकी तुहानू गाने उत्ते भी नचाणा ना आपां,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: सारा जोर इत्थे नहीं ना लवा देना। दसो किहड़ा गीत सुनाइए फिर।
1: किंग दा सुना दो कोई गाने जी वधिया जिहा।
0: ते लो जी, फिर असीं के एस कंग दा तुहानू गीत सुनाने आ, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा। बस एक दो मैसेज आपां पढ़ लईए।
1: परिवार ठीक है जी?
0: हांजी हांजी, सब ठीक ठाक जी। धन्यवाद जी कॉल करन दे लई।
1: ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, बाय।
0: धन्यवाद। सो दोस्तों, सानू ओवरसीज़ मैसेजेस भी काफ़ी सारे मिलते हैं, और ये सानू नीदरलैंड तो रविंद्र पाठक ते आशा पाठक मैसेज भेजते हैं, और कहते हैं कि सानू रंजीत बाबा का गाया गीत सुना दिओ। तो जरूर नाल दी नाल सानू

दोस्तों आकाशवाणी पंजाब ते तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात ते मैसेजेस दी कड़ी दे विच सानू ये मैसेज मिलिया जी जनक नगर जलंधर तों भेजण वाले ने सुखदेव सिंह नरेंद्र कौर सनी मनी काका बिट्टू लाडी मास्टर मून कहिंदे जी कोई भी गीत सुना दिओ ते जरूर पिंड दौलेवाल जिला मोगा।

जी प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ए बाणी फरमान भगत रविदास जी दे हिरदे दी वेदना है। आप जी प्रभु चरणा च बेनती करदे ने कि हे माया दे पति माधो, जेकर आप जी प्रीत ना तोड़ो ता मैं कदे भी नहीं तोड़ांगा, क्योंकि मैं ता होरना नालों प्रीत तोड़ के आप जी दे नाल सच्ची प्रीत स्थापित कीती है। माधवे तुम न तोरा हो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरे। प्रभु दे नाल मिलाप दी तांग जीव रूप स्त्री नू मुड कदीम तो ही रही है, ताही फिर ओ प्रभु चरना विच बेनती कर दी है कि हे प्रभु मैनू कोई ऐसा संत पुरुष सत पुरुष मिला दियो जो मेरी प्रीत आप जी नाल स्थापित करवा सके। प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी, पाए लगाओ मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़पागी। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

0: प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी पाए लगाओ मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ पागी। इस शब्द का गायन किया सी पाई गुरमीत सिंह शांत ते उनदे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज बाणी दे संपादन करता धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का उचारिया होया है। अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच राग गौड़ी अंग 204 उपर सुभाए मान है। इस शब्द विच परमात्मा नूं मिलन दी प्रीत दा वर्णन है। सिद्धांत यह है कि जदों पिछले जन्मां दे शुभ कर्म जो पिछले जन्मां विच कीते हन उस दे अंकुर जदों फुट पैंदे हन तां परमात्मा नूं प्रीत करन वाले रसक बैरागी उस प्रभु दे सुत्ते सिद्धी दर्शन कर लेंदे हन। क्योंकि मिलाप दा मुढ प्रभु प्रति लगन है। जदों कोई जीव इस्त्री लगन विच मगन हो के प्रभु प्रीतम अगे अरदास बेनती करदी है तां उस नूं फल लगदा है। इस शब्द विच प्रभु प्रीत प्रभु अगे अरदास प्रभु दे घर दी कथा सुननी सारे शब्द दा केंद्री भाव शब्द दीआं रहाउ वालीआं पंगतीआं विच दर्ज है। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी। हे भाई

0: होई जागी।
1: प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी, पाए लगाओ मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ पागी। इस शब्द की व्याख्या की तीसी ज्ञानी कुलदीप सिंह होरा। प्रभु दी महिमा अपरंपार है, उस दी शोभा बयान नहीं कीती जा सकती। मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा, उस परमात्मा दी शोभा बेअंत है, उस दी शोभा उत्तम है। सुनदे हां जोगिंदर सिंह कंग होरां पासों वार्ता। प्रिय की सोभ सुहावनी नीकी।
2: यह अमृतमई बचन बाणी दे बोहित राग दे तनी महान संपादक अते शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग मलार विच उचारण कीता होया है अते समुची मानवता दे पथ प्रदर्शक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1272 ते सुशोभित है। प्रभु प्यारे दी शोभा दा गुरबाणी विच बेशुमार अते बहुपक्षी वर्णन उपलब्ध हुंदा है। गुरबाणी परमात्मा दी उस्तत अते उसकी अपार शोभा नाल ओत प्रोत है। वक् वक् बाणीकारां ने प्रभु शोभा प्रभु वडियाई अथवा प्रभु महिमा दा बड़े विस्थार नाल उलेख कीता है। प्रभु प्रीतम दी महिमा दे अमृतमई बचन जीव दे हिरदे नूं शांत करदे हन। समर्थ प्रभु प्रीतम दी न्यारी ते विलक्षण महिमा दा अति सुंदर मनमोहना बिंब पंचम दातार जी राग देव गंधारी विच इस प्रकार निरूपित करदे हन। अमृता प्रिय बचन तुहारे अति सुंदर मनमोहन प्यारे सब हो मद निरारे। प्यारा प्रभु अगम अगोचर अकथ अते पतित पावन है, उस वर्गा कोई होर हो ही नहीं सकता। वो जल थल आकाश पाताल हर थां व्यापक है। वो अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो मिठ बोलड़ा है अते कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। वो बख्शिश ते रहमत दा सोमा है। प्रभु प्यारा सर्व उच्च अते बहु बेअंत है। उसकी सर्व उच्चता अते अनंतता नूं पंजवें सतगुरु जी राग देव गंधारी विच इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। मैं पेखियोरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा, आना समसर को लागे टूड रहे हम मूचा। रहाओ बहु बेअंत अत बड़ो गहरो, थह नहीं अग हूचा, तोल न तुलिया मोल न मुलिया, कत पाईऐ मन रूचा। अजिहे महान प्रभु प्रीतम दे सुंदर स्वरूप नूं श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े मनमोहणे अते रसावले ढंग नाल शोभादायक दस के अंकित कीता है। तेरे बंके लोयन दंत रीसाला, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया सोयने की टाला। सारे ब्रह्मंड नूं एक सूत्र विच परोण वाले अनंत शक्तियां दे मालक दी शोभा बड़ी सुहावनी अते नीकी है। उसकी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी कोयल वर्गे बोल अते उसकी सुंदर पगरी दा वर्णन भी गुरबाणी विच उपलब्ध हुंदा है। भगन नामदेव जी राग तिलंग विच रूपमान करदे हन। बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मुगोल। रंग रतड़े प्रभु प्यारे लई अपने प्रीतम दी शोभा सदा ही नवीन अते मन मोह लैण वाली ही दृष्टि गोचर हुंदी है। ओ उसकी प्रशंसा ते वडियाई तो बलिहार जांदा है। बंधन काटनहार अते प्रितपालक प्रभु प्रीतम दी शोभा दा कोई भी पारावार नहीं है। ओ अगम अगोचर बेशुमार बेअंत स्वामी ते वड्डा गोविंद है। श्री गुरु रामदास जी राग आसा विच कृपा करदे हन। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन

0: निरंकार जियो ताकि गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जानै क्या ए जंत विचारे कही है जो तुद आख वखाण। प्रभु प्रीतम अजिहा सुल्तान है जिस दे वस सारा जहान है। वह करता पुरख है उसका सर्वश्रेष्ठ दरबार है। गौड़ी ग्वारेरी विच पंचम पातशाह जी वर्णन करते हैं सब ते ऊच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्वव्यापत पूरन तनी जाकी शोभा काट काट बनी। सच्चे प्रीतम की शोभा दिनों दिन सुहावनी ते नीकी है। प्रभु प्रीतम दे मिलाप नाल सुख उपजदे हन अते दुख दूर हुंदे हन। अजेहे मिलाप नाल आनंददायक अवस्था दी प्राप्ति हुंदी है जिस नाल जीव दा समुच्चा जीवन खुशियां अते खेड़िया नाल भरपूर हो जांदा है।
1: प्रिय की सोब सुहावनी नीकी ए वार्ता सुना रहे सन जोगिंदर सिंह कंग। ओ अकाल पुरख परमात्मा सब तो सोना है, सृष्टि का मालक है, मना नूं मोहण वाला है, प्राणा का आसरा है, साड़ी जिंद ते जान है। ओ प्रभु आप ही हिरदे विच वसदा है। मन उस परमात्मा दी लीला वेख के विस्मादित हुंदा है, उस दे अचरज कौतक वेख के हैरान भी हुंदा है। मोहन प्राण मान रागीला बास रहेओ हियरे कै संगे पेख मोहेओ मन लीला। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

मोहन प्राण मान रागीला बास रहेओ हियरे कै संगे पेख मोहेओ मन लीला। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: जात में जोत, जोत में जाता, कलकला भरपूर है। तू सच्चा साहिब सिरस वाले हो, जिनकी तीसो पार पाया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत।

0: जाके दृष्टा चल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सनहो सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गोर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहने अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तर गुर जगत फिर नसी अंगरों राज जोग लहना करे।
1: सदा अकल लिव रहे करण शिक्षा चारे दुर्म स्पूर जो निवे खवे कस विमल बिचारे एह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज भय संचयो किरन मत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख सहज लयो गुर परस्यो हर्ष मुलवे जन दर्शन लेना पयो मन विश्वास पायो गहर गोदर दियो।

0: गर्म नाश्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद बिगा जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उधारो चेत दारिद हरण बिखंते कल मातरसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहन रसन।
1: नाम अख नाम आधार और नाम समाध सुख सदा।

0: आवे बन आवे।
1: गुर ज्ञान और ध्यान तत्स्यों तत् मिलावे, सच सच जानिए एक चित लिवलावे। काम क्रोध वस करे पवन उडंत नतावे, निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ।

मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जतन करै मनुख डहकावै

अंतर जामी जान पाप करे कर मुकर पावे पेख कर निर्वाण जानत दूर तुम्हें प्रभु ने।

जाब लाग तुट्ट नाही मन परमा, तब लग मुकत ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साहिकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे अरे आयत। देग तेग फत हे बिरद की पैज पं

0: जेकर सूतक मनिए सब पे सूतक होए, गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरे सब कोए, सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए, नानक सूतक ना उतरे ज्ञान उतरे तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना